हाँ, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 MHz पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून 2026 प्रातःकाल के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर प्रातःकाल के 6 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:05 हो रहे हैं। समय है आज के विचार का। आज का विचार है प्रकृति का सत्य विषय पर। वाचक स्वर है श्री विश्वनाथ मिश्र का।
3: कुछ लोग कहते हैं, उनका कहना है कि ईश्वर

0: को मानने की से लाभ के बदले हानि अधिक है। कारण यह है कि ईश्वर और वेद शास्त्र का नाम लेकर अंधविश्वासी लोग प्रगति के मार्ग में रोड़ा अटकाते रहते हैं। किंतु यह कहना एकदम असंगत है। इतिहास साक्षी है कि मुचुकुंद, मंधाता, शिवि, अम्बरीश, रघु आदि चक्रवर्ती राजा देश की तो कौन कहे अपने बल से भूतल की रक्षा करते थे, और आस्तिक भी इतने थे कि एक भी धर्मकृत्य इनसे कभी छूटता नहीं था। इसलिए यह कहना कि ईश्वरवादी प्रगति का विरोधी होता है सर्वथा निराधार है। यह कोई बुद्धिमानी नहीं है कि ईश्वर को मानने पर ईश्वरीय शास्त्रों के अनुसार चलना पड़ेगा, इसलिए ईश्वर की सत्ता ही स्वीकार न की जाए। किंतु किसी के स्वीकार करने या न करने से ईश्वर की सत्ता पर कोई आँच नहीं आती। चमगादड़ को सूर्य का प्रखर प्रकाश भले ही असत, अनावश्यक एवं हानिकारक प्रतीत होता हो, परंतु इससे सूर्य असत, अनावश्यक एवं हानिकारक नहीं हो सकता। वैसे ही किसी को ईश्वर असत, अनावश्यक एवं हानिकारक भले ही प्रतीत होता हो, किंतु उसकी प्रचंड सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता। उसकी सत्ता से यह जगत सत्तावान है, उसी के भान से यह भासित है, और उसके आनंद कण की आंशिक अभिव्यक्ति ही सांसारिक आनंद में है। इस प्रकार उस परमात्मा से हमारा सहज और नित्य संबंध है। यह कैसी विडंबना है कि हम उस नित्य प्राप्ति की उपेक्षा करके अनित्य, अप्राप्त तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील हैं। यद्यपि इसमें हमें सफलता नहीं मिलती, फिर भी हमारा व्यामोह दूर नहीं होता। जिस शरीर के लिए हम कृत्य अकृत्य कुछ भी कर गुजरते हैं, क्या उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं? भले ही हम ईश्वर को अस्वीकार कर दें, वेद शास्त्रों की उपेक्षा कर उनके लिए अपशब्द का प्रयोग कर दें, पर क्या हम जरा और मृत्यु की भी उपेक्षा कर सकते हैं? क्या हमारी स्वेच्छाचारिता का कोई बस इनके ऊपर चल सकता है? महाभारत में युधिष्ठिर के इस प्रश्न का कि क्या संसार में आश्चर्य क्या है, का उत्तर यक्ष ने यही दिया था कि संसार में प्रतिदिन ही प्राणी यमलोक में जा रहे हैं, फिर भी बचे हुए लोग यहाँ सदा जीने की इच्छा रखते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है? वास्तव में जो जिस दिन जन्मता है उसी दिन से उसका मरना भी शुरू हो जाता है। सारा दृश्य अदृश्य की ओर प्रतिक्षण जाते जाते एक दिन नष्ट हो जाएगा और नहीं दिखेगा। हमें तो यह सोचने की आवश्यकता है कि मरने वाले के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो न जन्मते हैं न मरते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि पदार्थ भौतिक हैं, सांसारिक हैं, ये मिले हुए हैं, ये मेरे नहीं हैं। मिली हुई वस्तु से जितना सत्कर्म पुण्य कर्म कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। सांसारिक वस्तु जो शरीरादि हैं, जिनका वियोग निश्चित है, उन्हें संसार हेतु समर्पित कर दिया जाए और वह भी कामना रहित होकर, तो परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव स्वयं हो जाता है। यह बात सदा ध्यान रखने की है कि सारे दुख की जड़ कामना है, अतः हमें इसका परित्याग करना है। जो चीज़ प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है उसे मानने में और उसे मानकर आचरण करने में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। यही बात गीता ने कहा है, स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।
1: आप सुन रहे थे आज का विचार। विषय था प्रकृति का सत्य। आज का विचार आपने सुना श्री विश्वनाथ मिश्र से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.0 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:10 हो चुके हैं। समय है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं इस गणेश स्तुति के साथ।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना राम तुम्हारा धाम छोड़कर और कहां मैं जाऊं इस भजन के साथ संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातःकाल के 6:30 बज चुके हैं। समय है रामचरितमानस गान का। कार्यक्रम में आज सुनिए बालकांड के दोहा संख्या 181 से दोहा संख्या 183 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ।

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, चूंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं

में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, क्योंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानी और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में किसान श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। कम पानी वाली फसलों के उत्पादन विषय पर जानकारी देंगी श्रीमती मुक्ता जैन। प्रातः 6:50 का समय रहेगा लोक

0: उपजन का सुबह 7 बजे लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सुप्रभात। गतिशीलता और संतुलन के लिए योग, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विकसित भारत के 12 वर्षों की यात्रा जैसे विषयों पर होंगी चर्चाएं। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण समय रहेगा हमारी पहली सभा में सुबह 7:30 बजे, तत्पश्चात सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक फिल्म संगीत में आप भूले बिसरे गीतों का आनंद ले सकेंगे। दिन में 12:40 और दोपहर 2:30 बजे का समय भी रहेगा हमारी पहली सभा में फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। दूसरी सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप शाम 6:05 पर उठा सकेंगे। 6:05 पर आप फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में युगल गीतों का आनंद लेंगे। रात्रि 8 बजे का समय, रात्रि 9:15 का समय और रात्रि 10 बजे का समय भी रहेगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। सुबह 8:30 बजे लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में होगी वार्ता राजस्थानी चित्रकला एवं उनकी शैलियां विषय पर। वार्ताकार होंगे श्री पुखराज शर्मा। कार्यक्रम सुगम संगीत का आनंद आप हमारी पहली सभा में सुबह 8:45 पर ले सकेंगे। तत्पश्चात आप सुगम संगीत सुन सकेंगे रात्रि 7:45 बजे। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का आनंद आप सुबह 9:10 पर ले सकेंगे। तत्पश्चात दिन में 12:10 का समय भी रहेगा लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का। रात्रि 8:30 बजे भी आप सुन सकेंगे लोक संगीत। सुबह 9:30 बजे लेकर उपस्थित होंगे हम प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुन सकेंगी दोपहर 1:05 पर। चर्चाएं रहेंगी रूढ़ियों को तोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता, स्वच्छ भारत अभियान, जन आंदोलन से जन भागीदारी तक, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर भी साथ ही साथ जानकारी महिलाएं सुनेंगी। वार्ता रहेगी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ और शरीर में फैलता जहर विषय पर। वार्ताकार होंगे श्री अमित ठाकुर। युवा साथी कार्यक्रम युवाणी सुन सकेंगे शाम 5:05 पर। आज की बात रहेगी संज्ञानात्मक स्वास्थ्य और स्मृति बनाए रखने के लिए योग। साथ ही साथ युवा साथियों के लिए लघु जानकारियां होंगी नेतृत्व क्षमता का विकास करें, खेल और फिटनेस, संस्कृति, अपनी विरासत को अपने आज से जोड़ें, चंबल नदी। साथ ही साथ युवा साथी कार्यक्रम में सुन सकेंगे वार्ता समाज में बढ़ती डिजिटल निर्भरता। वार्ताकार होंगे श्री मनोज सोनी। प्रस्तुति रहेगी श्री रेवंत राम लेघा की। संयोजनकर्ता होंगे श्री अमित सिंह। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे। चर्चा रहेगी पारंपरिक और छोटे कृषि उपकरण, कैच द रेन अभियान, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, एक पेड़ मां के नाम अभियान जैसे विषयों पर। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:30 बजे आप सुनेंगे चर्चा का विषय है और रात्रि 10:30 बजे आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से आप शास्त्रीय संगीत सुन सकेंगे। कलाकार होंगे पंडित लक्ष्मण प्रसाद। गायन रहेगा ख्याल जैत। ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। समय हो चला है किसान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम खेती की बातें का। कम पानी वाली फसलों के उत्पादन विषय पर जानकारी दे रही हैं श्रीमती मुक्ता जैन।
1: किसान भैया राम राम। किसान भैया भारत एक कृषि प्रधान देश होने रह नाते अठे की अधिकांश आबादी है वह खेती बाड़ी पर निर्भर है। फिर भी बहुत सारा इलाका फसला री सिंचाई रे लिए पानी री समस्या घनी होया करे है। अपने देश में बहुत सा किसान है जिका वर्षा रे जल पर आश्रित हुए और खेती करे और बहुत सा किसान नेरा में आने वाली पानी पर भी आश्रित रहा करे है। इस समय कभी कभी समय पर बारिश को नहीं हुए या फिर नदियां में पानी को नहीं आवे तो पानी रहे अभाव के कारण यो असर अपानी फसलों पर पड़े है और फसलारी उत्पादन क्षमता कम हो जावे है जिसो फसलारी पैदावार में भारी कमी देखने मिल रहे है। अतः

0: किसान भाई ने ओ चाहिए कि फसला री बुवाई करने में पानी री आवश्यकता वाली फसला हुए और देखो जाए तो बहुत सी ऐसी फसल है जिसमें बहुत ही कम पानी री आवश्यकता हुआ करे है। जिया कि जिया उतेला उड़द री खेती है, अर्र री खेती है, बाजरो और ज्वार री खेती है, मूंग री खेती है, और ज्वार बाजरो की खेती बरसात में भी कर सका हाँ, लगभग चार महीने में पक्कर आ तैयार भी हो जाया करे है। सबसे कम सिंचाई वाली फसल होया करे है। तो जिया मूंग की खेती है, आ गर्मी री दाल वाली फसल है, और गर्मिया रे मौसम में इन्हें आपा बोआ जिसे सिंचाई री बहुत ही कम आवश्यकता होया करे है। हैर इन्हीं प्रकार चना री खेती है, इनकी खेती आपा सर्दिया में करा, इनमें दाल और बेसन के रूप में आपा भी उपयोग करा। अगर सिंचाई री बात करा तो बुवाई करते समय मुख्य खेत में पर्याप्त नमी हो तो इनमें एक सिंचाई री भी जरूरत को नहीं पड़े करे है। हैर बुवाई रे समय 150 दिन बाद पक्करा तैयार भी हो जाया करे है। इन्हीं प्रकार अलसी और तीसी री जी की खेती होया करे है, बा सर्दियां रे मौसम में करा, चने की तरह इनमें भी सिंचाई री आवश्यकता कोनी होया करे है। एर बुबाई भी 150 दिन में फसल अपने पककर तैयार मिल रहे है। एर भाई लोगा मक्का री बुआई बरसात रे मौसम में करा, इनमें भुट्टो या भुट्टो कया करे है। एर ई फसल में सिंचाई बहुत ही कम करनी पड़े है। कुछ राज्य में इनकी खेती गर्मिया में भी करया करे है। ई प्रकार तिल री बुबाई है, आ एक तिलनी फसल है, इनमें दाने में मशीना के द्वारा तेल निकालो जावे है। इनकी खेती बरसात रे महीना में करी जावे है, इनमें भी बहुत ही कम सिंचाई री आवश्यकता होया करे है। भारत में कम बारिश वाला इलाका में अपने खेती करनी एक बहुत ही बड़ी चुनौती साबित हुई है। इन इलाका में भूजल स्तर कम होनो ही सागे सिंचाई रा पानी नहीं मिल पानो और जमीन बंजर हो जाया करे है। कुछ इलाका में इंगी वीरान हुए है और सरकारी सुविधाएं और सिंचाई री व्यवस्था करनो काफ़ी मुश्किल हो जाया करे है। एड़ी स्थिति में अपने ड्राई फार्मिंग तकनीक अपना उत्पादन हासिल करनो चाहिए। आपने बता दूं कि ड्राई फार्मिंग तकनीकी में फसलों ने जरूरत रही हिसाब से पानी दियो जावे है और खेती रे लिए उन्नत किस्म जैसा के खाद बीजारो प्रयोग कियो जावे है, जिसु चुनौतियां रे बीच अपन आपा खेती कर सका हाँ। इन अलावा कम पानी में पैदा होने वाली फसल में राजस्थान ने किसाना री तकदीर बदली है, क्योंकि सूखे री आशंका ने देखते हुए कृषि विभाग ने खरीफ री फसला में आ योजना बनाई है। और इन अलावा जिया की शुष्क खेती री जिकी तकनीक भी शुरू की गई है, बिंगे बेहतर प्रबंधन भी करियो गयो है, जिम उन्नत किस्म और कम पानी री उपयोगिता वाली बीजारो इस्तेमाल कियो जावे है। मिट्टी में नमी ने लॉक करने रे लिए गहरी जुताई, सतही खेती और प्लास्टिक मालविंग रो प्रयोग कियो गयो है। बारिश रे पानी ने इकट्ठो करने के खेती में ड्राई फार्मिंग तकनीक ने सफल बनायो जा सके है। वाटर शेड किसाना ने पानी री उपलब्धता में भी मदद करया करे है। ड्राई फार्मिंग में ड्रिप सिंचाई री तकनीक रो प्रयोग कियो जावे, जिसु पानी री बर्बादी नहीं हो पावेला और सीधो फसल जिको पानी है वो फसल री जड़ा में पहुँचेला। और जिको विशेषज्ञों रो मानना है कि मिश्रित खेती भी एक यानी कि एक सागे कई फसलों ने उगार मिट्टी री उपजाऊ शक्ति और भूजल स्तर ने बेहतर बनानो है।
1: किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, कम पानी वाली फसलों के उत्पादन विषय पर जानकारी दी थी श्रीमती मुक्ता जैन ने। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। समय हो चला है लोक भजन का, कलाकार है पुष्पा सैनी।

0: आप सुन रहे थे पुष्पा सैनी का गाया लोक भजन। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः काल के 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितौ सुरक्षा सहकार्यं गभीरं कर्तुं तथा च आतंकवादात् अन्तर्जालीय सुरक्षायाः च आरभ्य उदयमान प्रौद्योगिकी पर्यन्तं समाह्वानानां परिहारे ब्रिक्स इत्यस्य महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। प्रधानमंत्री श्री मोदी गतसायं नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदैः वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारिभिः सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम संदेशे श्री मोदिना प्रकाशितं यत् भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकतानां समर्थनं कर्तुं सुरक्षित समावेशीय विश्वे च

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम के प्रारंभ में ही हम आपसे बात करेंगे सेहत की, स्वास्थ्य की और सेहत और स्वास्थ्य के पर्याय योग की।

खास तौर से इस बारे में कि योग कैसे हमारे शरीर की गतिशीलता यानी मूवमेंट और बैलेंस यानी संतुलन को बेहतर बनाता है। श्रोताओं, आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते समय अक्सर शरीर में अकड़न महसूस होती है, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में खिंचाव महसूस होता है, या कभी कभी चलते समय संतुलन बिगड़ जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना, मोबाइल और लैपटॉप पर ज़्यादा समय बिताना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। इसका सीधा असर हमारे शरीर पर साफ साफ दिखाई देता है। श्रोताओं, अच्छी बात यह है कि इन समस्याओं का एक आसान समाधान हमारे पास मौजूद है, और वो है योग। जी हाँ, योग सिर्फ शरीर को मोड़ने तोड़ने का नाम नहीं है, ये शरीर को लचीला बनाने, मांसपेशियों को मजबूत करने, संतुलन को बेहतर करने का एक सरल और सहज तरीका है। सबसे खास बात यह है कि इसे किसी भी उम्र का इंसान कर सकता है। मान लीजिए आप रोज सुबह सिर्फ 20 मिनट के लिए योग करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि आपका शरीर पहले से ज़्यादा हल्का है, झुकना, उठना, चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना आसान लगने लगेगा। चलिए बात करते हैं कुछ आसान योग आसनों की। सबसे पहले बात करते हैं ताड़ासन। इसमें हमें बस सीधे खड़े होना होता है और अपने शरीर को स्थिर रखना होता है। देखने में यह आसान लगता है, लेकिन यह हमारे शरीर को सही संतुलन सिखाता है, और जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि इस आसान से दिखने वाले ताड़ासन के लिए भी कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके बाद बात करते हैं हम वृक्षासन की। जी हाँ, एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को ऊपर टिकाया जाता है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है श्रोताओं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से संतुलन काफ़ी बेहतर हो जाता है। अगर शुरुआत में दीवार का सहारा लेना भी पड़े तो बिल्कुल लिया जा सकता है। एक और आसान अभ्यास है मार्जरी आसन, जिसे कैट काउ पोज भी कहा जाता है। इससे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और पीठ का तनाव कम होता है। जो लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी आसन है। श्रोताओं, योग का फायदा तभी मिलता है जब इसे नियमित रूप से किया जाए। एक दिन किया और फिर कई दिन छोड़ दिया तो उससे लाभ नहीं दिखाई देता। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि रोज थोड़ा थोड़ा समय जरूर निकालें। एक और जरूरी बात, योग करते समय अपनी सांसों पर ध्यान जरूर केंद्रित करें। धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से भी मन शांत होता है और शरीर को ज्यादा फायदा मिलता है। बहुत सारे लोगों को लगता है योग सिर्फ बुजुर्गों के लिए है या फिर बहुत ज़्यादा फिट लोगों के लिए, लेकिन ये सच नहीं है श्रोताओं। योग हर किसी के लिए है। बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास कर सकते हैं। हम सबकी उम्र निरंतर बढ़ती है, हम इसे रोक नहीं सकते। ऐसे में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे संतुलन से गिरने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वहीं युवाओं के लिए योग शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने और तनाव कम करने में अच्छी खासी मदद करता है। तो श्रोताओं, अगर हम भी अपने शरीर को अधिक सक्रिय, लचीला और संतुलित बनाना चाहते हैं तो आज से ही योग को अपनी दिनचर्या में हमें शामिल कर लेना चाहिए। शुरुआत छोटी करें लेकिन नियमित रखें। धीरे धीरे हमें खुद अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगता है। इसी उम्मीद के साथ कि हम स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय रहेंगे और ये मानेंगे कि चलना ही दरअसल जीवन है, अगर हम रुक गए, हम ठहर गए तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो गतिशीलता बनी रहे, हम योग को अपने जीवन में अपनाएं, योग का प्रयास करें, योग का अभ्यास करें, तो फिर जीवन चलने ही का नाम है।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, आज 24 जून है, जी हाँ, और आज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व द्वारा मनाया जा रहा है। इसे 2022 में यूनाइटेड नेशन की महासभा द्वारा घोषित किया गया था ताकि कूटनीति, शांति स्थापना, वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महिलाओं के योगदान को सम्मान दिया जा सके। कूटनीति और विदेश नीति में महिलाओं की भूमिका को पहचान देना, निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में महिलाओं की समान भागीदारी को निश्चित करना, शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महिलाओं के योगदान को उजागर करना, कूटनीति के क्षेत्र में मौजूद लैंगिक बाधाओं को कम करने के लिए जागरूकता फैलाना इस दिवस के खास मकसद हैं। श्रोताओं, ये दिवस इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं की भागीदारी से कूटनीतिक वार्ताएं अधिक समावेशी और प्रभावी बनती हैं, साथ ही साथ वैश्विक शांति और विकास को मजबूती मिलती है। ये कहना गलत नहीं है कि कूटनीति में महिलाओं की समान भागीदारी शांति और प्रगति की आधारशिला है। हम हमेशा से ही जानते आए हैं श्रोताओं, और इस बात का अनुभव भी युगों युगों से समाज करता आया है कि कूटनीतिक क्षमताएं महिलाओं में बहुत अधिक होती हैं। परिवार को कैसे सूझबूझ के साथ चलाना है, पारिवारिक व्यवस्थाएं कैसे करनी हैं, परिवार में संबंधों को मधुर किस तरह से बनाए रखना है, ये एक महिला चाहे तो पूरी तरह से सफल तरीके से कर सकती है। और अगर इसके विपरीत महिला ठान ले कि उसके आसपास की चीज़ें उसके अनुकूल नहीं हैं, उसके हिसाब से नहीं हैं, तो वही महिला संबंधों में अलगाव भी पैदा कर सकती है, विरोध भी पैदा कर सकती है, और इसी तरह से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं इस संतुलन और सामंजस्य को बैठाए रखने की पुरुषों की तुलना में अधिक क्षमता रखती हैं। इसीलिए जब भी हमें दुविधा पैदा होती है, उलझन पैदा होती है, तो सबसे पहला ख्याल हमें हमारी माँ का आता है। अपने आप अनायास ही कदम माँ की तरफ उठते हैं कि माँ हमें बताएगी कि माँ ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है, इस प्रश्न का जवाब हमें दीजिए। कुछ इसी तरह की कूटनीति, कुछ इसी तरह की बातचीत, कुछ इसी तरह के प्रश्न का जवाब देता है ये गीत जो नंदलाला ने पूछा है यशोमती माँ से।

श्रोताओं, हम सबको गर्व है कि हम भारतीय हैं और हमारा ये प्यारा देश पूरे विश्व में धीरे धीरे अपनी पहचान को और मजबूत करता चला जा रहा है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं विकसित भारत के 12 वर्षों की यात्रा के बारे में। श्रोताओं, ये यात्रा केवल आर्थिक विकास की नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन, तकनीकी नवाचार, सुशासन और आत्मनिर्भरता की भी कहानी है। भारत आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान और वैश्विक नेतृत्व के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। विकसित भारत का सपना केवल अब सरकार का लक्ष्य नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक आकांक्षा है। जी हां श्रोताओं, पिछले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था ने निरंतर प्रगति की है। देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है। विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप, संस्कृति, विदेशी निवेश में वृद्धि, इन सब ने आर्थिक विकास को नई गति दी है। आज भारत वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। वहीं अगर डिजिटल क्रांति और तकनीकी परिवर्तन की बात करें तो डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया है। ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल सेवाएं, ई गवर्नेंस और इंटरनेट की पहुँच ने आम नागरिक की जिंदगी को आसान कर दिया है। आज गाँवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुँच रही हैं जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ रही है। वहीं सड़क, रेल, मेट्रो, हवाई जहाज और बंदरगाहों के विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। एक्सप्रेसवे, आधुनिक रेलवे स्टेशन और तेज परिवहन सुविधाएं देश की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बना रही हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में भी खासी बढ़ोतरी हुई है श्रोताओं। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से स्थानीय उत्पादन और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला है। वोकल फॉर लोकल की भावना ने भारतीय उत्पादों को नई पहचान दी है। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण और अन्य क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर हम कृषि की बात करें श्रोताओं, तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये हम सब जानते हैं। किसानों को तकनीक, सिंचाई सुविधा, बीज, उर्वरक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक कृषि पद्धतियों और डिजिटल सेवाओं के जरिए कृषि को अधिक उत्पादक और लाभकारी बनाने की दिशा में बहुत काम हुआ है श्रोताओं। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार का मार्ग मजबूत किया है। कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को रोजगारमुखी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आज का भारत ज्ञान, नवाचार और अनुसंधान को विकास का आधार बना रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, अस्पताल के आधुनिकीकरण और स्वास्थ्य बीमा योजना ने करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया है। चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ी है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो विकसित भारत का निर्माण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना तो संभव ही नहीं है। शिक्षा, उद्यमिता, राजनीति, विज्ञान, खेलों में महिलाओं ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। विभिन्न योजनाओं और अवसरों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है श्रोताओं। इसके साथ अगर बात की जाए अंतरिक्ष और विज्ञान की उपलब्धियों की, तो भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व भर में अपनी नई पहचान बनाई है। चंद्रमा और अंतरिक्ष मिशन की सफलता ने भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता को साबित कर दिया है। विज्ञान और नवाचार आज भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को अलग ही ऊंचाइयों पर ले गए हैं। आज भारत विश्व के महत्वपूर्ण देशों में गिना जाता है। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, वैश्विक शांति, तकनीकी विकास जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत हुई है। भारत की आवाज को विश्व समुदाय गंभीरता से सुनता है। जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब हमारा लक्ष्य एक विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर, समावेशी राष्ट्र बनना है। इसके लिए हमें शिक्षा, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्यों पर खास तौर से ध्यान देना होगा श्रोताओं। विकसित भारत के 12 सालों की यात्रा उपलब्धियों, चुनौती और नए अवसरों की प्रेरणादायक कहानी है। यात्रा हमें बताती है कि जब सरकार, समाज और नागरिक मिलजुल कर काम करते हैं, तब असंभव लक्ष्य भी संभव बन जाते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, राष्ट्र निर्माण में योगदान दें और विकसित भारत के सपने को साकार करें, जीवित करें श्रोताओं। भारत हमेशा से ही सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश है। इसकी धरती, इसकी ज़मीन हमेशा ही हीरे, मोती और सोना उंगला करती है। तो बस हम भारत निर्माण में अपने योगदान से कभी ना चुके हैं। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ, जिसमें उम्मीद है, आशा है कि हम वापस हमारे भारत को सोने की चिड़िया वाला भारतवर्ष बनाने में अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कार्यक्रम सुप्रभात से दे आ गया, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे थे सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। पहला गीत सुनिए येसुदास और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है खय्याम का, फिल्म है त्रिशूल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म दिले नादा से नक्श लायलपुरी का लिखा गीत। संगीतकार एक बार फिर से हैं खयाम।

ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत और आप सुन रहे हैं इसे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में जानिसार अख्तर का लिखा गीत, फिल्म का नाम है नूरी।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में शहरयार का लिखा गीत, जिसे संगीत दिया है शिव हरी ने, और फिल्म है फासले।

ये गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था फासले, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म लम्हे से। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है, संगीत है शिव हरि का।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आशा भोंसले के गाए इस गीत के साथ, जिसे नक्श लालपुरी ने लिखा था। खयाम का था संगीत और फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता। फिल्मी गीतों का ये सफर यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा

0: नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा।

0: संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है। हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान

0: को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। ब्रिक्स नेशंस कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन टू एड्रेस वाइडनिंग रेंज ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड साइबर थ्रेट्स। Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates

0: Stadium. The IMD has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into parts of Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh during the next 2 days. It forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Konkan and Goa over the next 3 days. Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Telangana are expected to witness heavy rainfall today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Anuja. Center tightening norms for foreign contributions has been widely covered by all the dailies today. Hindustan Times writes, government issues new rules for Foreign Contribution Regulation Act to boost the fundraising ability of religious bodies registered as NGOs and to bar religious conversion. BRICS national security advisors and heads call for joint action against terrorism, cyber threats, states the Tribune. An editorial in the Pioneer writes on how e-governance is transforming Grameen Bharat. With nearly 900 million people living in rural India, the effectiveness of our Panchayati Raj institutions will shape the trajectory of the nation's development, as it is the bedrock upon which a Viksit Bharat will be built. India and US rework trade deal amid tariff changes as fresh talks begin after Modi-Trump G7 meet, notes the Asian Age. The Statesman reports about a record surge in Vaishno Devi pilgrims as the number crosses the 50 lakh mark well before the year reaches its halfway point. International Maritime Organization announces plan to evacuate vessels stuck in Persian Gulf due to the war in West Asia, writes the Hindu. And finally, The Economic Times writes about Gujarat government focusing on Ranshala to educate children of salt pan workers by converting unusable buses into classrooms equipped with smart TVs and TV connectivity dedicated to educational channels. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। समय है कार्यक्रम सौरभ का। कार्यक्रम में आज सुनिए वार्ता राजस्थानी चित्रकला एवं उनकी शैलियां। वार्ताकार हैं श्री पुखराज शर्मा।
3: राजस्थान एक विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसमें 8वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित हो चुके थे। इस प्रदेश में शासक राजपूत अर्थात राजपुत्र थे। उनकी छाप आज भी समस्त भारत में स्पष्ट दिखाई देती है। राजस्थानी चित्रकला से तात्पर्य उस चित्रकला से है जो राजस्थान की कोख से जन्मी। यह राजस्थान की अमर धरोहर है तथा इसने देश विदेश में अनेक कला मनोज्ञ को अपनी ओर आकर्षित किया है। जिस समय अपभ्रंश शैली अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, तब उसी अपभ्रंश शैली से राजस्थानी शैली का जन्म हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थानी शैली की जननी बनने का जो सौभाग्य है वो अपभ्रंश शैली को ही जाता है। राजस्थान शैली के नामकरण में भी अलग अलग मत हैं। राजस्थानी राज्यों में राजपूत वंशीय शासक होने के कारण इसका नाम राजपुताना कहना उचित नहीं है। राजस्थान क्षेत्र की कला को राजस्थानी कला के नाम से पुकारना ही उचित है। जाति के आधार पर राजपूत कला नाम इसका उचित नहीं है। अतः राजस्थान की कला को राजस्थानी शैली के नाम से पुकारना एकदम से उचित है। इस नाम से एक निश्चित क्षेत्र की विशिष्ट कला का संबोधन होता है। मारवाड़, मेवाड़,

नादवारा, किशनगढ़, जयपुर, बूंदी, कोटा एवं बीकानेर की शैलियाँ राजस्थानी शैली की प्रमुख उपशैलियाँ हैं। राजस्थानी शैली आरंभ से राजदरबारों तक ही सीमित रही, धीरे धीरे उसका प्रचार व प्रसार हुआ बड़े बड़े रजवाड़ों की देखा देखी छोटे छोटे रजवाड़ों और सामंतों तथा जागीरदारों के यहाँ भी चित्रकला का प्रवेश हुआ। इस प्रकार इस शैली की समृद्धि के अनेक केंद्र बने हैं जहाँ से उनकी अनेक लोक लुभावनी विधाओं का सृजन होता रहा है। इन केंद्रों की संख्या अनिश्चित है। राजस्थानी शैली के चित्रों पर धार्मिक प्रभाव था। चित्र भक्ति व श्रृंगार के बने थे। यह शैली भक्ति काल में फली फूली। कबीर, मीरा, सूरदास, रहीम जैसे भक्तों ने साहित्य के माध्यम से कृष्ण, राम और शिव का गुणगान किया था। अनेक साहित्यिक रचनाओं जैसे गीत गोविंद, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता आदि के आधार पर कृष्ण भक्ति रासलीला का अंकन भी किया गया है।

काल में फली फूली कबीर, मीरा, सूरदास, रहीम जैसे भक्तों ने साहित्य के माध्यम से कृष्ण, राम और शिव का गुणगान किया था। अनेक साहित्यिक रचनाओं जैसे गीत गोविंद, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता आदि के आधार पर कृष्ण भक्ति रासलीला का अंकन भी किया गया है। अनेक देवी देवताओं के चित्र भी लोकप्रिय रहे हैं जिसमें राम, कृष्ण, शिव आदि के चित्र प्रमुख हैं। कला व साहित्य का समन्वय इस शैली में अनूठा है। ऋतु एवं रागमालाओं के चित्र इस काल की महत्वपूर्ण देन हैं। ऋतुओं और संगीत का चित्रण कलाकार की तीव्र एवं कुशाग्र बुद्धि विद्यता का सूक्ष्म दर्शन पर प्रकाश डालता है। इस शैली में सामाजिक जीवन को अछूता नहीं छोड़ा गया। यह शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। चित्रकार ने दरबार से निकलकर सीधे साधे ग्रामीण जीवन, पनघट, खेत खलियान, तीज त्यौहार, उत्सव, तमाशा एवं चौपालों आदि का स्वभाव चित्रण इस शैली में किया है। यह शैली जन जन की शैली है। इसमें समस्त आम आदमी का चित्रण किया गया है जो अन्य शैलियों में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इस शैली में आम आदमी को बताया गया है जो कि मुगल या अन्य किसी शैली में नहीं बताया गया है। कलाकार ने पूरे ग्रामीण परिवेश को अपनी कला में दिखाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इस समय का जो कलाकार था वह ग्रामीण कलाकार था। वह गली गली ग्रामीणों के हर चौपाट पर घूमता था एवं वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी उसको अपने चित्रों में उतारने का प्रयास करता था। वो किसी दरबार का चित्रकार न होकर के आम आदमी का चित्रकार था। कलाकारों ने अपने आश्रितदाताओं, राजाओं तथा अमीर उम्राओं के व्यक्ति चित्र व दरबारी चित्रों का भी अंकन किया है, जिसमें राजसभा का चित्र, अदालत के चित्र, हुक्का पीते हुए चित्र तथा पुरस्कृत होते हुए चित्र आदि बहुत चित्र बताए गए हैं। प्रेम राजस्थानी शैली का प्रधान विषय रहा है। इसके लिए कलाकारों ने प्रेम के प्रधान आलम्बन को, नारी जीवन का चित्रण काव्य की नायिका भेद को आधार मानकर किया है। राजस्थानी शैली की उप शैलियों में किशनगढ़ शैली की प्रधानता रही है। किशनगढ़ शैली राजस्थानी शैली का स्वर्ण काल है। इस समय का बना बनी ठनी चित्र विश्व प्रसिद्ध चित्र है, जिसकी तुलना हम मोनालिसा चित्र से कर सकते हैं। बनी ठनी को हम भारतीय मोनालिसा कहते हैं, क्योंकि मोनालिसा चित्रों को जितनी प्रसिद्धि विश्व में मिली है उतनी भारत में बनी ठनी को भी मिली है। किशनगढ़ शैली की कहानी नागदास एवं बनी ठनी की प्रेमाशक्ति धूप छाव के बीच पल्ली बढ़ी है। महाराजा सावन सिंह जो बाद में भक्त नागदास के उपनाम से प्रसिद्ध हुए तथा उनकी दासी बनी ठनी हृदय प्रीता थी, ये दोनों नायक नायिका के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नागदास ने अपनी राधा बनी ठनी को पा लिया और यहीं से किशनगढ़ चित्र शैली को एक नया आयाम मिला। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में निहालचंद, अमरचंद और सीताराम प्रमुख हैं। वर्तमान में शहजाद अली, बन्ना शंकर सिंह राठौड़, वैष्णवदास, धनालाल आर्य इसकी ख्याति के बनाए रखे हुए हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रों में आकृतियाँ लंबी व सरहरी हैं, लंबे चेहरे हैं, ऊंचा तथा पीछे की ओर ढलवा ललाट, लंबी व नुकीली नाक, पतले होठ, तिरछी धनुषाकार भौहें, लंबी ग्रीवा, तिरछे नयन, कानों के पास झूलती बालों की लट, ये चित्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं। मारवाड़ त्याग और बलिदान की भूमि रही है। जोधपुर, कुचामन, जावला, मरोठ इस चित्र संस्कृति के प्रमुख केंद्र हिंदू रहे हैं। इस शैली में ढोला मारू, पृथ्वीराज रासो, पाबूजी, हड़बूजी, मूमल दे, निहाल दे के चित्र प्रमुख रूप से बने हुए हैं। मारवाड़ शैली में लालचंद, फैजली, उदयराम भाटी, बिशनदास भाटी, शिवदास आदि का प्रसिद्ध चित्रण रहे हैं। आधुनिक काल में इस कला को प्रसिद्ध कलाकार रामलाल, शिवबक्ष एवं धर्मपाल आदि जी ने जीवित रखा है। वर्तमान में सुभाष कुमावत ने इस शैली को कांच व स्वर्ण वर्क आदि से संजोकर करके नया आयाम दिया है। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह नगरी मनोरम झीलों के कारण विश्वविख्यात है। उदयपुर का दरबार सदैव कला एवं संस्कृति से गूंजता रहा है। मेवाड़ के चित्रों की विषय प्रधानता धार्मिक है। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बहुतायत चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें भागवत पुराण, रामायण, राग रागनिया, नायिका भेद, सूर सागर आदि इसके प्रधान विषय रहे हैं। इन पर बने चित्र अनेक संग्रहालयों में सूचित हैं। मेवाड़ में शौर्य, वीरता, बलिदान एवं त्याग के चित्र बने हैं। जयपुर राज्य राजस्थान की प्रमुख राज्यों में से एक है। सवाई जयसिंह प्रतिभा संपन्न शासक थे। उन्होंने शासन व्यवस्था, विद्युता तथा भवन कला में अनोखी सूझबूझ का परिचय दिया है। उसने नवीन राजधानी जयपुर का निर्माण करवाया।
इस नगर

0: योजना प्रदान की एवं चित्रकला का अच्छा विकास हुआ। बीकानेर की चित्रकला में बीकानेर के राजा राय सिंह एक कला प्रेमी शासक था। उसके समय एक सचित्र पांडुलिपि प्राप्त होती है। यह पांडुलिपि मेघदूत नामक रचना की प्रतिलिपि है। कला की दृष्टि से यह चित्र अपभ्रंश राजपूत शैली के उदाहरण हैं। महाराजा कर्ण सिंह के समय बीकानेर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। बीकानेर पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। उस दरबार के चित्रकार बीकानेर आए एवं यहाँ आकर उन्होंने चित्रकारी की। महाराजा सूर सिंह ने शीश महल का बीकानेर में निर्माण करवाया और अनूप महल का भी को नवीन रूप प्रदान किया। इस समय में बीकानेर के शाही महलों में भित्ति चित्रों पर राम सीता उमा महेश राधा कृष्ण आदि के धार्मिक चित्र बनाए गए। महाराजा सुजान सिंह के समय में रनिवास के कक्षों तथा पर स्त्रियों के चित्र अलंकृत किए जाने की परंपरा चल पड़ी थी। गज सिंह सूर सिंह तथा रतन सिंह के समय बीकानेरी कला पर मुगल एवं जोधपुर प्रभाव बढ़ने लगा था। बीकानेरी कला का प्रौढ़ रूप अनूप महल फूल महल चंद्र महल एवं सुजान महल की चित्रकारी में दिखाई पड़ता है। मुन्ना लाल मुकुंद उस्ता कायम कासिम अहमद अली प्रमुख चित्रकार थे। राजस्थानी शैली की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो राजस्थानी शैली एकदम से शुद्ध भारतीय शैली है। इस पर किसी भी विदेशी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है और उस समय किसी विदेशी प्रभाव पर नहीं पड़ा था। चित्रों में रेखाएँ बारीक गतिशील भावपूर्ण अलंकृत लयपूर्ण थी। रंग चटकीले भड़कीले भी बनाए गए हैं कहीं और सादे रंगों का प्रयोग भी राजस्थानी शैली में बहुत किया गया है। राजस्थानी शैली के अंदर खनिज रंगों में रसायन को मिला करके काम में लिया गया है। चित्रों में एक चश्मे चेहरों की प्रधानता थी। वैसे हर प्रकार के चेहरे भी बनाए गए हैं लेकिन एक चश्मे चेहरों को प्रधान रूप दिया गया है। और चित्रों की संयोजन की अगर बात करें तो मुख्य आकृतियों में जो होती थी उनको प्रधानता प्रदान गई है। मुख्य आकृति को बीच में एवं परिपूर्ण बनाया गया है और चित्रों में प्रकृति चित्र का भी अच्छा प्रयोग किया गया है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए देशभक्ति सहगान।

आप सुन रहे थे देशभक्ति सहगान। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। सुबह के 8:45 होने को हैं। जी हाँ, समय मिला लें। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। समय हो चला है सुगम संगीत का। कलाकार हैं अनूप जलोटा।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत कलाकार थे अनूप जलोटा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने को हैं। आकाशवाणी जयपुर से प्रस्तुत हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निःशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया। कहा, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा। आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स समूह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी सदस्य देशों के बीच अधिक एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब समय केवल उत्पादन बढ़ाने का नहीं बल्कि भारतीय उत्पादों और ब्रांडों को वैश्विक पहचान दिलाने का है। कल नई दिल्ली में वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र विषय पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भारत की गुणवत्ता, नवाचार और क्षमता को दुनिया के हर बाजार तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है। श्री सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न राज्य और वस्त्र क्षेत्र के सभी हितधारक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले सालों में ये

0: गति और तेज होगी। केंद्र, राज्य, जिले और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों से उत्पादन, निर्यात और मूल्य संवर्धन के नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे।
1: सिल्क बोर्ड 26,000 मैट्रिक टन पर 2014 में प्रोडक्शन साइज था, अभी 42,000 से ज्यादा है। आने वाले दिन में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए। फैब्रिकेटर से भी कहूंगा, एक लाइन तुम अपने ब्रांड का भले उस नाम से नहीं लेकिन दूसरे नाम से एक्सपोर्ट करना शुरू करें, जिससे इंडिया का ब्रांडिंग भी हो।
0: वस्त्र मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात को 37 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सम्मेलन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निःशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से इसका शुभारंभ करेंगे। पशुपालन विभाग ने बताया कि ये वायरस मक्खी, मच्छर और किलनियों के जरिए फैलता है। विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-2023 में इस बीमारी के कारण राज्य में लगभग 76,000 गौवंश प्रभावित हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1,538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सीवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भाकरोटा में नए ट्रोमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जेडीए, नगर निगम, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यों को गति देने के लिए अत्याधुनिक सुपर सकर और मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व देने के लिए स्वामित्व कार्ड भी बांटे जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को भ्रामक और निराधार बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और सरकार इसकी लगातार निगरानी रख रही है। मंत्रालय ने कहा कि 20% एथेनॉल मिश्रण वाले E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन खराब होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिलाने या ईंधन टैंक के पास जमा होने के वीडियो पूरी तरह से झूठे हैं। E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन का बीमा खत्म होने का दावा भी गलत पाया गया है। सरकार के अनुसार अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये व्यवस्था पहले से ही सफलतापूर्वक लागू है। इस कार्यक्रम से देश में कच्चे तेल की आयात में कमी आई है और 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आज राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सीकर, झुंझुनू, करौली, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए किसानों के लिए विभाग ने विशेष एडवाइजर जारी की है। किसानों से खेतों और मंडियों में खुले में रखी पकी हुई फसलों और अनाज को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखने की अपील की गई है। रेलवे ने यात्री अनुशासन को मजबूत करने और यात्रा को अधिक सुरक्षित

0: बनाने के लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। रेलवे बोर्ड आदेश के अनुसार 20 जून से देश भर में तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है। जयपुर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में खतरनाक और प्रतिबंधित सामान ले जाने के मामलों में भी सख्ती बढ़ाई गई है। पटाखे, गैस सिलेंडर या विस्फोटक सामग्री ले जाने पर न्यूनतम 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में आरोपी को जेल भी भेजा जा सकता है। वहीं अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा किए जाने पर पूरी यात्रा का किराया और कम से कम 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम चरण के साक्षात्कार 2 और 3 जुलाई को होंगे। सहायक आचार्य इतिहास और पुस्तकालय अध्यक्ष के साक्षात्कार 6 से 17 जुलाई तक चलेंगे। सहायक आचार्य संस्कृत के लिए 6 से 16 जुलाई और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के अंतिम चरण के इंटरव्यू 6 से 10 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न सुपर स्पेशलिटी के लिए सहायक आचार्य के साक्षात्कार 10 जुलाई को होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया, कहा ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा। आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हो रहे हैं। समय है लोक संगीत का। आज सुनिए अभय सिंह गहलोत के गाए लोकगीत और लोक भजन।

आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे अभय सिंह गहलोत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग

35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुमसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है।

0: वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओ, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहां पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहां पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहां की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओ, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओ, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हां, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहां के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहां पर कार्य करता है इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on,

इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए

0: शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग दीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
2: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज

0: के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
2: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
3: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
2: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
3: जी मैं प्रस्तुत हूं।
2: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
3: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
3: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
3: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
3: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
3: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुलके।
3: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी
0: तो फिर क्या था विश्वविद्यालय

0: अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का यह अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी

0: बहु भाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र दो पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। सुबह के 10 बज रहे हैं। जी हाँ, समय मिला लें, सुबह के 10 बज रहे हैं। समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में सुनिए नई फिल्मों से गीत। पहला गीत सुनिए फिल्म हम आपके हैं कौन से। आवाज़ है SP बाला सुब्रमण्यम की। देव कोहली ने गीत को लिखा है, राम लक्ष्मण का है संगीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए फिल्म सलमा पे दिला गया से अलका याग्निक की आवाज में अगला गीत। गीत को बोल दिए हैं रविंद्र सचदेव ने। आदेश श्रीवास्तव का है संगीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत सुनिए फिल्म अकेले हम अकेले तुम से, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की हैं। गीत को बोल दिए हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है अनु मलिक का।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: होता है।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

आकाशवाणी बीकानेर की ढूलामारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए हम है राही प्यार के, इस फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अगला गीत।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अभिजीत और नीरजा पंडित की आवाजों में फिल्म खूबसूरत से गुलजार का लिखा गीत, जिसे जतिन ललित ने दिया है संगीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जिसमें नई फिल्मों से आप सुन रहे हैं गीत, लीजिए सुनिए फिल्म बागी से मोनाली ठाकुर की आवाज में अगला गीत, जिसे कुमार ने लिखा है और मीट ब्रदर्स का है संगीत।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गीत आपने सुना। संगीत था जतिन ललित का, आवाजें लता मंगेशकर और उदित नारायण की थी। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गीत को बोल दिए थे आनंद बख्शी ने। फिल्मी गीतों के सफर में आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से लीजिए सुनिए फिल्म नाराज से कुमार सानू की आवाज में अगला गीत। कतील सफाई ने गीत को बोल दिए हैं और संगीत है अनु मलिक का।

कुमार सानू की आवाज में गई फिल्म नाराज के इस गीत के साथ ही नई फिल्मों से गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 11 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मों के वो गीत जो आपने सुने तो होंगे लेकिन बहुत ही कम बार।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, जिसे हमने लिया था फिल्म शमा से। कैफी आजमी के बोल थे और गुलाम मोहम्मद का संगीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनोखी अदा फिल्म का ये गीत, सुरेंद्र की आवाज़ में।

सुरेंद्र की आवाज में ये था अनोखी अदा फिल्म का गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हमने उन गीतों को शामिल किया है जिनको आप भूले तो नहीं, लेकिन उनको आपने बहुत ही कम बार सुना होगा। अब पेश है फिल्म जाल का ये गीत, किशोर कुमार और गीता रॉय की आवाज में।

0: அதில்லைக்கா.
1: किशोर कुमार और गीता रॉय की आवाज़ों में ये था जाल फिल्म का गीत, साहिर के बोल थे और एस डी बर्मन का संगीत। लीजिए अब सुनिए शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में पतंगा फिल्म का ये गीत। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत सी रामचंद्र का है।

शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म पतंगा में सुनने के बाद लीजिए अब सुनिए ठोकर फिल्म में तलत महमूद की आवाज़ में ये गाना।

और ये है दूर का राही फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल हैं और किशोर कुमार का संगीत।

साजन देहलवी का लिखा और सरदार मलिक के संगीत से सजा ये था फिल्म ठोकर का गीत, तलत महमूद की आवाज़।

मन्ना डे का गाया ये था दूर का राही फिल्म का गीत। शैलेंद्र की गीत रचना थी और किशोर कुमार की संगीत रचना। सच में दोस्तों, बहुत से लोगों की यही कसक दिल में रहती है कि एक दिन आया और वो चला गया, लेकिन उस एक दिन में हमने क्या पाया ये महत्वपूर्ण होता है। हमने खोया है, लेकिन हम कल कुछ पा भी लेंगे, और ये तभी होगा जब हम सच्चे मन से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, और तभी ईश्वर हमारा साथ देगा। बहरहाल, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सरगम फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में। पीएल संतोषी की गीत रचना है और सी रामचंद्र का संगीत।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से, और आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। और अब आपके रेडियो सेट पे आ रहा है छलिया फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजाइए था छलिया फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। लीजिए आप सुनिए बावरे नैन फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, केदार शर्मा के बोल हैं और रोशन का संगीत।

आकाश भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में ये था बावरे मैन फिल्म का गीत, और ये है महल फिल्म का गीत राजकुमारी की आवाज़ में। जी नक्सब के बोल हैं और खेमचंद प्रकाश का संगीत।

बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कारवां फिल्म में जोहराबाई अंबावाली की आवाज में ये गीत।

जोहराबाई अंबावाली की आवाज में फिल्म कारवा के इस गीत के बाद भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए सुमन कल्याणपुर की आवाज में दिल ही तो है फिल्म का ये नगमा।

दिल ही तो है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फैशन फिल्म का ये गीत हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। गीत रचना भरत व्यास की है और संगीत रचना हेमंत कुमार की।

0: हेमंत कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म फैशन में सुनने के बाद आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर का गया फिल्म काजल का ये नगमा।
1: आपके

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आरजू फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। हसरत जयपुरी की इस गीत रचना को शुरू में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

दोस्तों, ये था आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको वे गीत सुनवाए जिनको आपने शायद बहुत ही कम बार सुना होगा।

0: मंगेशकर की आवाज में गई फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढूलामरू चैनल है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द भी वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की

0: स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामरू चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर रिले करेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम। सुगम संगीत प्रसारित होगा 7:45 पर और शास्त्रीय संगीत रात 10:30 पर। लोक संगीत का रसा स्वादन आप कर सकेंगे 12:10 पर और रात्रि 8:30 पर। दिन में 1:05 पर महिला श्रोता सुनेंगी अपना महिला जगत कार्यक्रम। आज इसमें चर्चाएं होंगी, रूढ़ियों को तोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता, स्वच्छ भारत अभियान, जन आंदोलन से जन भागीदारी तक, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जयंती और वीवी गिरी पुण्यतिथि विषयों पर अमित ठाकुर की एक वार्ता होगी जिसका विषय होगा डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ और शरीर में फैलता जहर विषय पर। साथ ही होगा फिल्म संगीत

युवा साथी संध्या 5:05 पर सुनेंगे अपना युववाणी कार्यक्रम। इसमें आज की बात होगी संज्ञानात्मक स्वास्थ्य और स्मृति बनाए रखने के लिए योग विषय पर। श्री मनोज सोनी की वार्ता होगी जिसका विषय होगा समाज में बढ़ती डिजिटल निर्भरता। साथ ही होगी लघु जानकारियां, क्विज टाइम, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत।

संध्या 7 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में चर्चाएं होंगी पारंपरिक और छोटे कृषि उपकरण, कैच द रेन अभियान, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान और एक पेड़ माँ के नाम विषयों पर। साथ ही होगा लोक संगीत।

फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, संध्या 6:05 पर, रात 8 बजे, रात 9:15 पर और रात्रि 10 बजे।

हम आपको एक बार फिर से याद दिलवा दें, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर रिले करेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम।

ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में अभी आपने सुनी धीरा सेन के स्वर में टिडियो लोक गीत। लीजिए आप सुनिए फतेह कुमारी व्यास के स्वर में ये लोक गीत।

श्रोता कुमारी व्यास के स्वर में गाए इस लोकगीत के बाद आइए अब सुनते हैं गणपतलाल डांगी और उनकी पार्टी का गाया ये लोकगीत।

लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मरु चैनल से। लीजिए अब सुनिए हेतराम जावा का गया हिचकी लोकगीत।

अब्दुल गनी के स्वर में गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 12:40 हुए।

हमारी प्रस्तुति के रूप में अभी आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में बाजार फिल्म की ये गजल। शब्द रचना मीर तकी मीर की थी और संगीत खय्याम का था।

0: भोसले की आवाज में ये था उमराव जान फिल्म का नगमा, शहरयार के बोल थे और खयाम का संगीत।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में अर्थ फिल्म की ये गजल।

अजीत सिंह की आवाज में गई ये गजल आप सुन रहे हैं अर्थ फिल्म से। कैफी आजमी के बोल है और जगजीत सिंह का संगीत।

परीक्षाओं के समय में चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये हो कि गम जिंदगी में आए ही नहीं और हम भी किसी को गम देने वाले हो ही नहीं।

की आवाज में ये है आहिस्ता आहिस्ता फिल्म की गजल। शब्द रचना निदा फाजली की है और संगीत रचना खयाम की है।

काश हम ऐसी कोशिश करें कि हमारे द्वारा किसी का भला हो जाए और कोई खुशियों के गीत गाए।

भूपिंदर की आवाज में गई फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की इस गजल के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 1 बजने वाले हैं अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में अधिकारियों के साथ पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में अधिकारियों ने रिफाइनरी से उत्पादित विभिन्न पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के नमूने प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करती ये महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय लिखेगी। साथ ही पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, केमिकल और अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देकर राजस्थान को विनिर्माण और औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाएगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सांगानेर के त्रिपोलिया हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आज सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1500 से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सीवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भाकरोटा में नए ट्रोमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का भी शिलान्यास किया जाएगा। वहीं जेडीए, नगर निगम, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से करेंगे। पशुपालन विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से लोगों की यात्रा आसान हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। बूंदी शहर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत गढ़ पैलेस में शहनाई वादन से हुई। इसके बाद गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। इस अवसर पर पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय स्तर के चित्रकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। संग्रहालय सहायक जगदीश वर्मा ने बताया कि बूंदी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रानी जी की बावड़ी, सुख महल और 84 खंभों की छतरी पर पर्यटनों और आमजन का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूंदीवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री ने बूंदी को राजस्थान की अतुल्य सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक गौरव का अनूठा प्रतीक बताया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थी और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश भर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी क्षेत्रों में तेज गर्मी और उमस का असर बरकरार है। राजधानी जयपुर में आज सुबह कई जगह हल्की बरसात हुई। भरतपुर में भी सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 हो चुके हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना महिला जगत कार्यक्रम।

0: बहनों, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। और आज के कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हूँ मैं माधुरी शर्मा
1: और मैं साक्षी गोस्वामी। तो कीजिए स्वीकार हमारा प्रेम भरा
0: नमस्कार।
1: बहनों, एक सवाल पूछूं आपसे, जवाब अपने दिल पर हाथ रखकर दीजिएगा।
0: बिल्कुल।
1: क्या आपको याद है कि आखिरी बार आप अपने लिए कब खुलकर हंसी थी?
0: शायद कभी नहीं।
1: कब बिना किसी अपराध बोध के आपने अपने लिए कुछ किया था?
0: शायद नहीं।
1: कब आईने में खुद को देखकर कहा था कि मैं भी जरूरी हूँ?
0: सोचा ही नहीं। बहुत गहरा सवाल किया तुमने साक्षी। हाँ, हम महिलाएं अपनी जिंदगी अपनी तरह से कब जी पाती हैं? सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारियां निभाने तक ही अपने आप को सीमित कर लेती हैं। सुबह से रात तक सबका ख्याल, लेकिन जब बात अपनी आती है तो खुद से कह देती है चलो मेरा क्या है।
1: तभी तो माधुरी मैंने ये सवाल किया है बहनों से। बहनों, जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं मिली है हमको, जीने के लिए मिली है।
0: बिल्कुल।
1: एक अच्छी माँ बनने से पहले एक खुश मिजाज इंसान बनिए, ज्यादा जरूरी है वो। एक अच्छी पत्नी बनने से पहले खुद से प्यार करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो महिला खुद को खो देती है वो धीरे धीरे अपनी मुस्कान अपनी शख्सियत भी खो देती है।
0: और जो शख्सियत खो देती है तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रही है, है ना?
1: सही बात।
0: साक्षी, एक सही बात तो तुमने कही है, लेकिन बहनों हर दिन खुद के लिए कम से कम 15 मिनट या 30 मिनट जरूर निकाल लीजिए। अपने सपनों को फिर से याद कीजिए, हमेशा अपने सपनों को याद कीजिए और अपने टाइम टेबल को सुनिश्चित कीजिए। और दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जिए। अपनी पसंद का काम करें, अपने लिए समय निकालें, योग प्राणायाम कीजिए, प्रकृति के बीच जाइए, प्रकृति में अपना समय बिताइए, या फिर अपने शौक का या पसंद का कोई भी काम, नृत्य संगीत या चित्रकला या पेंटिंग, जो भी आपको अच्छा लगे, सिलाई करना, जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए, क्योंकि वो आपका अपना समय है और आपका अपना शौक है। वहाँ आप अपने आप से मिलती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और वो समय सिर्फ अपने लिए रखिए, उसमें किसी और की जो दखलंदाजी होगी ना वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना बहनों? क्योंकि जिंदगी काटने के लिए तो हमको बहुत लंबी लगती है, लेकिन जीने के लिए शायद उतनी भी लंबी नहीं है। इसलिए आज से सिर्फ दिन मत गिनिए, हर दिन को जीना शुरू कीजिए। खुद को अपनी जिंदगी की प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि आपकी मुस्कान सिर्फ आपकी नहीं पूरे परिवार की ताकत है।
0: हाँ, और ये सोचिए कि हम जीवन में क्यों आए हैं, इसलिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है।
1: बिल्कुल। जब आप ये सोचेंगी तभी आप अपने आप से प्यार कर पाएंगी, क्योंकि आपकी मुस्कान हमारे कार्यक्रम में डाल देती है नई जान। तो आपकी मुस्कान को बरकरार रखते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: जवानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: माधुरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कही एक बात मुझे याद आ रही है कि मन का विकास ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।
1: हाँ।
0: लेकिन जरा सोचो, अगर हमारा मन ही पुरानी और गलत सोच की बेड़ियों में बंधा रहेगा तो फिर विकास कैसे होगा। आज भी अगर हम देखते हैं ना माधुरी, हमारे समाज में कई ऐसी रूढ़ियां हैं जिन्हें लोग बिना सोचे समझे सच मानकर बस आगे ही बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमने बचपन से यही सुना है, ऐसा देखा है कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता आया है, हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते थे। लेकिन बहनों, कभी खुद से भी तो पूछिए कि क्या सिर्फ इसलिए किसी बात को सही मान लेना चाहिए क्योंकि वो वर्षों से चली आ रही है?
1: नहीं, वर्षों से चली आ रही कुछ परंपराएं तब रूढ़ी बन जाती है या रूढ़िया बन जाती है जब वो किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, जब वो किसी के सपनों को दबा देती है, या उस लड़का या लड़की को अलग या बेवजह बिना गलत नजर से देखती है। ये रूढ़िया है, वो क्या ऐसा सोच कर आगे बढ़ने से रोक सकती है?
0: बिल्कुल।
1: तो ये रूढ़िया है जो परंपराएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारे जीवन को जीने में बाधा डालती है, वो रूढ़ियां हैं। तो हमें क्या करना है? ऐसी बंदिशें या रूढ़ियां हमारे रास्ते में आए ये हमें गवारा नहीं। मंजिल टूट दूर सही, रास्ते कठिन सही, हौसले बड़े हैं, इरादे बड़े होने चाहिए, कोई रुकावट बड़ी नहीं। समाज की बेड़ियां टूट रही है, परंपराएं हमारी साथी है न कि हमारी रास्ते में बाधक।
0: बिल्कुल।
1: रूढ़ियां जंजीरें हैं जो हमें रोकती है, पर परंपरा वो अनुसरण का रास्ता है।
0: बिल्कुल।
1: जो सही होना चाहिए वो रास्ता है परंपरा, और रूढ़ियां हमारे रास्ते में बाधक है। तो हमें क्या करना है? उन्हें तोड़ना है।
0: और जब हम बात करते हैं माधुरी रूढ़ियों की, तो ऐसा नहीं है कि ये सब रूढ़ियां सिर्फ महिलाओं के लिए ही हैं, पुरुषों के लिए भी हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हम लड़कों को बचपन से यही कहते हैं कि अरे लड़के रोते नहीं है, या मर्द को दर्द नहीं होता है ना, और लड़कियों को ये हिदायत दी जाती है कि ज्यादा मत बोलो, लोग क्या कहेंगे, ऐसे हंस रही हो खिलखिलाकर, है ना। इससे क्या होता है कि हम बचपन से ही बच्चों को अपनी भावनाएं दबाना देते हैं, है ना।
1: जब बच्चों की भावनाएं दब जाती है ना, तो बाद में क्या होता है साक्षी, ये कुंठा के रूप में जन्म लेती है, और ये कुंठित एक समाज का निर्माण होता है जो कि सरासर गलत है। ऐसे समाज की हम रचना नहीं करना चाहते, हम तो एक स्वस्थ समाज की रचना करना चाहते हैं जिनमें सब जो भावनाएं हैं उन्मुक्त तरीके से जिए, उन्मुक्त तरीके से हर लड़की हर इंसान जिए। तो हर स्त्री हो चाहे बच्ची हो, उसे अपनी पसंदीदा जो रास्ता है उसको चयन करने का हक है, अपने पसंदीदा जीवन साथी को चुनने का हक है। ये सब चीजें जो उसे उन्मुक्तता देती है, जिससे वो उन रूढ़ियों को तोड़कर आगे चले, अपने जीवन को विकसित करे।
0: बिल्कुल। क्योंकि मगर हम कई बार क्या होता है ना, अपनी पसंद से ज्यादा हम समाज के हिसाब से जीने लग जाते हैं। लेकिन बहनों, एक बात याद रखिए कि परंपराओं की जैसे कि हम बात कर रहे हैं वो हमें जोड़ने के लिए होती है, बांधने के लिए नहीं। और संस्कार ऐसे जो हैं जो हमें आगे बढ़ाएं, ना कि हमको पीछे खींचे। और ये बिल्कुल भी ना समझे बहनों कि रूढ़ियों को तोड़ने का मतलब परिवार से लड़ना या बड़ों का अपमान करना है। इसका मतलब है कि सम्मान के साथ सही बात करना,
1: सही बात को आगे लेकर जाना, ताकि उसको विकास मिले।
0: बिल्कुल,
1: है ना। और ऐसा करना हमें आना भी चाहिए, तभी तो हम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दे पाएंगे कि वे गलत को गलत कह सके और सही को सही, और अपने रास्ते पर ले जा सके, है ना, अपने कदमों को।
0: क्योंकि जिस दिन एक माँ अपनी बेटी से कहेगी कि अपने सपने पूरे करो बेटी, अपने बेटे से कहेगी कि बेटा रोना कमजोरी नहीं है, इंसानियत की निशानी है, उसी दिन समाज सच में बदलना शुरू होगा।
1: इसीलिए बहनों, बदलाव की शुरुआत स्वयं से करें, क्योंकि बदलाव किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से शुरू होता है, और वो व्यक्ति आप भी और मैं भी हो सकते हैं।
0: तो चलिए बहनों, आज से थोड़ा थोड़ा बदलने का प्रयास करते हैं, और थोड़ा बदलाव हम भी करते हैं आपके मूड में, और बातों के सिलसिले को मोड़ देते हैं गीतों की तरफ।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
6: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
7: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: माधुरी, क्या कभी तुमने ध्यान दिया है कि जब घर में 2 लोगों के बीच बहस हो जाती है,
10: हाँ,
9: तो अक्सर कोई एक महिला ही होती है जो कहती है कि अच्छा पहले चाय पी लो, फिर आराम से बात करेंगे। यही छोटी सी बात असल में कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी का सबसे सरल रूप है।
10: सही रूप में तो बात करने का तरीका ही कूटनीति के रूप में जाना जाता है ना। कूटनीति का अर्थ सिर्फ देशों के बीच समझौते करना नहीं होता, इसका अर्थ है बातचीत के जरिए मतभेदों को कम करना, रिश्तों को जोड़ना, बिना टकराव के समाधान निकालना। और इस काम में हम महिलाएं बहुत माहिर होती है।
9: बिल्कुल,
10: दो बच्चों में यदि लड़ाई हो जाए तो माँ सबसे पहले सुलह कराती है,
9: सबसे पहले आती है ना। और कभी बहन बनकर हम रिश्तों में मिठास भी घोल जाते
10: हैं।
9: कभी कार्यस्थल पर अलग अलग विचार रखने वाले लोगों को भी ना एक टीम की तरह साथ लेकर चलती है ना।
10: ये शुरुआत हमने घर से की, घर से सीखी। देखो, हम महिलाएं सदियों से कला सहज रूप से निभाती आई है, कभी माँ बनकर, कभी भाई के रूप में, भाई बहन की लड़ाई में, तो कार्यस्थल पर भी हम ऐसा करती है। इसी उद्देश्य को देखते हुए हर वर्ष 24 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स इन डिप्लोमेसी मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य कूटनीतिक शांति वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और उनके योगदान को सम्मान देना है।
9: बिल्कुल, और अगर हम आज दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया की कई महिलाएं बहनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सहयोग और संवाद की नई मिसालें पेश कर रही हैं। लेकिन सच तो ये है कि हर वो महिला जो गुस्से की जगह बातचीत को चुनती है, मतभेद की जगह समझ को बढ़ाती है और टूटते रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती है, वो भी अपने स्तर पर एक बेहतरीन कूटनीतिज्ञ है।
10: हाँ, बेहतरीन कूटनीतिज्ञ है और हम उसको कहेंगे कि आज के जमाने से जुड़ी है। अब हम बात यदि करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कूटनीतिक डिप्लोमेसी में महिला नेतृत्व, विकास और सशक्त बलों में लैंगिक समानता को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनकी कूटनीति के प्रमुख आयाम जो है वो ये है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व का स्वागत किया है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनी रक्षा प्रणाली में पहली महिला रक्षा सचिव मेगन क्विन की नियुक्ति पर

0: ने विशेष रूप से सराहना की। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महिला सैनिकों के योगदान का को एक मजबूत समर्थन भी उन्होंने दिया। सेना में लैंगिक समानता को बल दिया और महिलाओं की भागीदारी और भूमिका तेजी से बढ़ी। इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्थायी कमीशन की स्थापना भी की और इस तरह से उन्होंने महिलाओं को ज्यादा समर्थन दिया ताकि वो डिप्लोमेसी में अपना एक अहम स्थान बनाए और अपने स्थान के द्वारा दो राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध को बढ़िया बना।
1: क्योंकि बहनों हम महिलाओं का क्या होता है ना कि सबसे पहला जो हम हर समस्या को समाधान करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान बहस से नहीं संवाद से हो जाए,
0: शांति द्वारा।
1: जहां संवेदनशीलता और समझदारी साथ चलती है वही शांति का रास्ता अपने आप बन जाता है
0: और शांति ही विकास का बड़ा रास्ता है।
1: क्योंकि बहनों शक्ति केवल ऊंची आवाज करने में नहीं है बल्कि ऐसी बात करने में है जो दिलों को जोड़ दे। तो आइए हम भी आपके दिलों को जोड़ें और सुरों से सजे गीतों को सुनकर को सुकून दें।

0: Akashwadi at 90.
1: जी हाँ बहनों, ये आकाशवाणी है और हम इस आकाशवाणी के माध्यम से अक्सर बात करते हैं कि जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से हमारा जो है शरीर वो खराब हो रहा है।
2: हाँ।
1: क्योंकि ये सिर्फ फूड नहीं है बल्कि इसकी इजीनेस या टेस्टीनेस के पीछे छुपा हुआ एक जहर है। ये हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है, आइए जानते हैं एक वार्ता के जरिए जिसका विषय है डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ और शरीर में फैलता जहर। और वार्ताकार है अमित ठाकुर।
3: भोजन हमारी मूल आवश्यकता है अर्थात जीवन का पर्याय है, और यदि ऐसा है तो स्वस्थ जीवन के लिए भोजन को गुणवान भी होना चाहिए। वही भोजन शरीर को जीवनी शक्ति दे सकता है जो ताजा है, पौष्टिक है और शुद्ध है। भोजन और मन का गहरा संबंध है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। हमारे देश में भोजन ग्रहण करने की रीति नीति स्थान, मौसम व क्षेत्रीय उपलब्धता के अनुसार थी, परंतु बदलते परिदृश्य में सब कुछ बदलता जा रहा है। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों ने सब कुछ बदल दिया। आज मनुष्य के पास वक्त नहीं है भोजन के संबंध में विचार करने का। वक्त पर यानी भूख लगने पर जो मिला वो पेट के हवाले कर दिया। ऐसे में बाजार में बने खाद्य पदार्थ और उसमें भी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण हो गए। औद्योगिकरण की नीतियों और वृद्धि दर ने बड़े पैमाने पर ऐसी खाद्य सामग्रियों को प्रोत्साहित किया। भारतीय परिवेश के अनुसार रसोई में ताजा भोजन प्रयुक्त किया जाता था, परंतु देर तक वह भोजन रखने पर संक्रमित हो जाता है, अतः डिब्बा बंद भोजन प्राथमिकता हो गया। भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का आविष्कार किया गया, जिसमें कि प्रमुख रूप से प्रिजर्व यानी संरक्षित रखने की प्रक्रिया को अपनाया गया। संरक्षण की इस प्रक्रिया के लिए अधिकतर रसायनों का प्रयोग किया जाता है। संरक्षण या प्रिजर्व करने के अतिरिक्त पैकेजिंग के द्वारा भी खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने और जीवाणु संक्रमण को रोकने में पैकेजिंग महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से पैकेजिंग फायदेमंद है, परंतु इस प्रक्रिया के लिए भी रसायनों का प्रयोग होता है और वह कहीं न कहीं

स्वास्थ्य पर पाचन अंगों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि पैकेजिंग के लिए प्राकृतिक व परिष्कृत सामग्रियों को विकसित कर प्रयोग में लाया जाता है, 19वीं सदी में दफ्ती से बने कार्टनों और नालीदार फाइबर बोर्ड बक्सों का प्रयोग किया जाता था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में बोतलों पर बैकेलाइट निर्मूलन, पारदर्शी सोलोपन द्वारा मोड़ना आदि इस प्रक्रिया में शामिल हुआ। पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाले कांच के विषय में जानें तो पहला तथ्य यह है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन इसको सेफ पैकेजिंग मटेरियल की मान्यता देते हैं, लेकिन तरल पदार्थ के भंडारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कांच की बोतल में लेड यानी न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो शरीर में बाधा पैदा करता है यानी अवरोध पैदा करता है। इसके प्रभाव या कहें कि दुष्प्रभाव से उल्टी, यकृत व गुर्दे में क्षति हो सकती है। बोतल के ढक्कन में थैलेट होता है जो हार्मोनल सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। एनर्जी ड्रिंक्स और बियर कैन में प्रयुक्त एल्युमिनियम और टिन के डिब्बों में ऑर्थोफेनिल फेनॉल का प्रयोग होता है। इसमें बैक्टीरिया व फंगस को खत्म करने के लिए जिस कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है उससे कैंसर हो सकता है। प्लास्टिक की पैकेजिंग भी हानिकारक होती है। इसमें डिसफेनॉल ए रसायन होता है जिससे बच्चों के मस्तिष्क और महिलाओं के प्रजनन अंग व तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूध और जूस के डिब्बों में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक को पॉलीओलेफिन्स कहा जाता है। इसमें मौजूद बेंजोफिनोन और मिमिक्स महिला प्रजनन हार्मोन एस्ट्रोजन पर बुरा प्रभाव डालते हैं जिससे प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले कागज और गत्ते से प्रिंटिंग इंक भोजन में मिलती है जिससे हार्मोन स्तरों में गड़बड़ी हो सकती है। रिसाइकल्ड पेपर बॉक्स डाई आइसो ब्यूटिल थैलेट और डाई इन ब्यूटिल थैलेट से दूषित हो जाते हैं जो कि पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। पिज्जा पैक करने वाले डिब्बों में PFDS यानी फोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड नामक विषाक्त पदार्थ है जो कि बच्चों के विकास विशेषकर जिगर को प्रभावित करता है, साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली तथा हार्मोन स्तर को भी प्रभावित करता है। सेलोफेन और जिसे कि सलाद, फल, सैंडविच आदि को कवर करने के काम में लिया जाता है, उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ इसमें पैक नहीं करने चाहिए। एल्युमिनियम फॉइल से गर्म चीजें पैक नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से एल्युमिनियम खाने में मिलकर शरीर में प्रवेश कर जाता है जिससे शरीर का कैल्शियम रक्त में आ जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसकी अधिकता से पागलपन और अल्जाइमर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ दुकानों और अलमारियों में रखे कितने ही शोभावान लगते हों परंतु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होते हैं। मांसाहारियों के लिए डिब्बा बंद मीट भी उपलब्ध होता है परंतु इसके संरक्षण या परिरक्षण के लिए प्रयुक्त सोडियम नाइट्रेट व नाइट्राइट्स जब शरीर में अवशोषित होते हैं तो कैंसर, ल्यूकेमिया, ब्रेन ट्यूमर इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की अधिकता से मधुमेह, अतिसार और श्वसन अंगों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रिजर्वेटिव्स की अधिकता मांसपेशियों की कमजोरी, पेट दर्द, शौच में रक्त कमजोरी व बेहोशी जैसी समस्याएं भी पैदा करते हैं। सूखे फलों, वाइन, श्रिम्प, आलू से बने पदार्थों को परिरक्षित करने पर विटामिन B1 समाप्त हो जाता है जिसकी कमी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। यदि आप सल्फाइड्स के प्रति संवेदनशील हैं तो आपको त्वचा में खुजली, दाद, तनाव, पेट में दर्द, अतिसार, सांस में कठिनाई इत्यादि हो सकती है। सोडियम बेंजोएट सॉस, अचार, जैम इत्यादि में प्रयुक्त होता है जिसके दुष्प्रभाव के कारण भी एक्जिमा, दमा इत्यादि की समस्या हो सकती है। जब यह विटामिन सी से संयुक्त होता है तब इसके दुष्प्रभाव से कैंसर, ल्यूकेमिया की संभावना बढ़ जाती है। इस सब के अतिरिक्त

जब यह डिब्बे और पैकेजिंग पदार्थ कूड़े में पहुंच जाते हैं, तब भी वहां रासायनिक परिवर्तन के कारण पर्यावरण व वायु को दुष्प्रभावित करते हैं। अतः इन सब को कचरे के रूप में भी सावधानी पूर्वक फेंकना चाहिए। नई तकनीक जीवन को आसान बनाने के लिए विकसित की जाती है, अतः तकनीकों का सावधानी पूर्वक सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। प्राचीन कहावत के अनुसार अति सर्वत्र वर्जयेत, पर चलते हुए अपने व पर्यावरण के स्वास्थ्य की रक्षा का प्रयत्न हमें सदैव करना चाहिए, क्योंकि जीवन है तो जहान है।

बहनों, अभी आपने ये वार्ता सुनी, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ और शरीर में फैलता जहर, जिसके वार्ताकार थे अमिता ठाकुर। बहनों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब हम आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने अंदर ये जहर ले रहे हैं। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: माधुरी, कल मैं ना जब पार्क में वॉक कर रही थी ना, तब मैंने देखा कि एक बच्चे ने चॉकलेट खाकर उसका रैपर वहीं फेंक दिया।
1: अच्छा।
0: और जब बच्चे ने रैपर फेंका तो उसके पापा ने वो कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। हाँ। तो बच्चे ने पूछा कि पापा आपने मेरा कचरा क्यों फेंक दिया, तो इस पर उसके पापा ने बोला कि मैंने तुम्हारा कचरा नहीं उठाया, तुम्हें एक आदत सिखा रहा हूँ। उस दिन बेटे को समझ में आ गया कि स्वच्छता भाषण से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से शुरू होती
1: जी
0: है।
1: जी हाँ, ऐसा व्यवहार हमें करते रहना चाहिए जहाँ कहीं भी हम कचरा देखें। यही बात तो स्वच्छ भारत अभियान की भी है। ये केवल सरकार का ही अभियान नहीं है बल्कि हर नागरिक की सोच और जिम्मेदारी का अभियान है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका उद्देश्य सिर्फ सड़क साफ करना ही नहीं था बल्कि पूरे देश में स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाना था। और अब समय है कि ये जन आंदोलन जन भागीदारी में बदल जाए।
0: बिल्कुल। और बहनों, हम अक्सर कहते हैं कि देश साफ होना चाहिए, लेकिन क्या हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं? सड़क पर कचरा ना फेंकना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, सार्वजनिक स्थानों को अपना समझना और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित

0: करना, यही सच्ची जनभागीदारी है और इस अभियान में सब समाज का हर वर्ग अपनी भूमिका निभा सकता है।
1: और इसके लिए हमें ये व्यवहार करना जरूरी है कि कहीं भी हम यदि कचरा देखें तो चाहे हम कितनी भी मतलब अच्छे लगते हों, लेकिन वो कचरा अगर हमें दिखे, हम अपने हाथों से उठाकर उसको डस्टबिन में डालते हैं, तो ये जो व्यवहार है वो सबके लिए प्रेरणादायक बन सकता है। जैसे बच्चे कचरा डस्टबिन में डालें, महिलाएं कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखें, पानी की बचत करें, बच्चों को यही संस्कार दें, और पुरुष भी और घर में ऑफिस में सब जगह सफाई बनाए रखें, बुजुर्ग सभी को प्रेरित करें, स्वच्छ भारत अभियान वास्तव में जन आंदोलन तभी बन सकता है और जब जैसे, हम व्यवहार अपनाएंगे।
0: जैसे हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वैसे ही भारतीय सेना भी सीमा में खड़े होकर अपना कर्तव्य निभा रही है। तो आइए उनकी शौर्य गाथा सुनते हैं कैलाश खीर की आवाज में।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना।
1: बहनों, आज का दिन हमें दो ऐसी महान विभूतियों की याद दिलाता है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में रहते हुए भी देश की आत्मा को समर्थ किया। एक ओर स्वर साधना के महान उपासक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर हैं, तो दूसरी ओर देश के चौथे राष्ट्रपति और श्रमिकों के अधिकारों के प्रबल समर्थक वी बी गिरी। और कहा भी जाता है बहनों कि जब शब्द कम पड़ जाएं तब संगीत बोलता है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने अपने संगीत को केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बनाया, ना माध्यम बनाया, बल्कि उसे भावनाओं, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति भी बना दिया। उनके सुरों में भारतीय परंपरा की आत्मा बसती थी और बहनों, उन्होंने दिखाया कि सच्ची साधना केवल कला में ही नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण भी करती है।
2: जी हाँ, ऐसे रागों के विख्यात ज्ञाता पंडित ओंकार ठाकुर जी की जब हम बात कर रहे हैं तो उनका आज जन्मदिवस है। ओंकार नाथ ठाकुर जो भारत शिक्षा शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे, उनका संबंध ग्वालियर घराने से था। उनका जन्म 24 जून 1897 जहाज खंबात गुजरात बड़ौदा राज्य के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, वहाँ हुआ था। उनकी गायन शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली थी। वे संगीत के शिक्षक थे, साथ ही संगीत के ज्ञाता थे जो पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत थे। वाराणसी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत के आचार्य पद की गरिमा उन्होंने बढ़ाई थी।
1: बिल्कुल, गरिमा उन्होंने बढ़ाई थी। जैसे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने गरिमा बढ़ाई, वहीं वीबी गिरी ने भी अपने पूरे जीवन में यही संदेश दिया माधुरी की किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसके मेहनतकश लोग होते हैं। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों, सम्मान और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर कार्य किए। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी को नहीं छोड़ा और जनसेवा की भावना लोगों के लिए प्रेरणा बनी रही उनकी।
2: जब हम बात करते हैं ओंकार नाथ ठाकुर की, तो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। 50 से 60 के दशक में पंडित जी की महफिलों का जलवा पूरे देश के मंचों पर छाया रहता था। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी की गायकी में इतनी रंजकता का वो समावेश करते थे कि शास्त्र के अलावा उनकी गायकी में ऐसे वे रंग उढ़ेल देते थे कि सामान्य श्रोता भी उनकी गायकी का, उनकी कलाकारी का मुरीद हो जाता था। और उनका गाया वंदे मातरम, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, सुनने पर एक रूहानी एहसास होता था। तो वे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने हमें सुरों से बांधा और हमारी परंपरा और जो हमारी संस्कृति है उसके वो मुखर।
1: बिल्कुल, यदि बहनों हम इन दोनों महान व्यक्तित्वों के जीवन से एक साझा सीख लें तो हम यही सीखते हैं कि प्रतिभा तभी सार्थक होती है जब उसके साथ समर्पण, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी जुड़ी हो। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए और हम भी अपना काम अपनी जिम्मेदारी निभाने आते रहेंगे। लेकिन आज के लिए दीजिए आगे अपने दोनों सखियों, मैं साक्षी गोस्वामी
2: और माधुरी शर्मा को नमस्कार।

0: अभी महिलाओं ने सुना अपना महिला जगत कार्यक्रम। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. India lodges strong protest against Pakistan over Kashmir issue at UNSC, accuses Islamabad of misusing its position as co-chair. Indian embassy in Tehran issues revised advisory for

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

0: ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहाध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहाध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबुधाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति

0: नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के दो

श्रोताओ, अभी सावन का महीना तो नहीं है, लेकिन हर किसी के मन में ये भाव, ये इच्छा जरूर होती है कि सावन का महीना हो और

श्रोताओ, अभी सावन का महीना तो नहीं है, लेकिन हर किसी के मन में ये भाव, ये इच्छा जरूर होती है कि सावन का महीना हो और बादलों की झमाझम बरसात हो। बहरहाल, कार्यक्रम का ये गीत हमने लिया था फिल्म कश्मीर की गली से। आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाजों में चांदनी फिल्म का ये गीत।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

call them hands?

चांदनी फिल्म में ये है आनंद बख्शी की गीत रचना और शिव हरि का संगीत।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: जी हाँ दोस्तों, 90 वर्षों से आप श्रोताओं की सेवा में है आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए महान फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। अनजान की गीत रचना है और आर डी बर्मन की संगीत रचना।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन

जी हाँ दोस्तों, प्यार में ऐसा ही होता है कि हमें हर जगह अपने प्रेमी और या कहें कि प्रेमिका की तस्वीर ही नजर आती है। वैसे प्यार में आदमी कुछ भी कर लेता है, वो गा लेता है, वो डफली बजा लेता है। ऐसा ही कुछ है कार्यक्रम के इस अगले गीत में, जिसे हमने लिया है फिल्म सरगम से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। आनंद बख्शी की गीत रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना।

और ये है अमित कुमार की आवाज में आमने सामने फिल्म का गीत। गीत रचना एक बार फिर आनंद बख्शी की और संगीतकार आर डी बर्मन।

जी हाँ, आप आवाज की दुनिया के दोस्तों के लिए अब कार्यक्रम में आ रहा है ये अगला गीत। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में ये है ताल फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी की गीत रचना और ए आर रहमान का संगीत।

मधुलिका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में गाए फिल्म ताल के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारे आज के प्रसारणों की ये मीडियम वेव की सभा अब यहीं समाप्त होती है। एफएम बैंड पर प्रसारण जारी रहेंगे। ये प्रोग्राम हमारे डीआरएम चैनल 1386 किलोहर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे। संध्या 5 बजे संध्याकालीन सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: मेगाहर्ट्ज 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को है। अब संध्याकालीन सभा हिंदी में समाचारों से प्रारंभ होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और यूएई के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का

0: लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 2029 के लिए दृष्टिपत्र जारी करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो मादक पदार्थ आयात से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमसुद्रून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SMKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तथा स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। खेदेम शिलेमा चानू कप्तान तथा निधि और एंगिल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम।

0: अरे यार, वो क्या था? अभी तो याद था मुझे, फिर दिमाग से निकल गया।
1: क्या हुआ, फिर से फोन का पासवर्ड भूल गई आज?
0: अरे पासवर्ड तो छोड़ो माधव, मैं तो ये भूल गई हूँ कि मैंने अपना फोन अनलॉक क्यों किया था। अभी तो दिमाग में था और अब एकदम ब्लैंक।
1: भाई हर बार का है, तुम पिछली बार भी भूल गई थी। दोस्तों, अगर आप सबके साथ भी आजकल ऐसा ही होता है तो घबराइए नहीं, इस लाइन में आप अकेले नहीं है। स्क्रीन टाइम, स्ट्रेस और रील्स के स्क्रोलिंग वाले ज़माने में हम सब की हालत एक सी है। हमारी मेमोरी ऐसे मानो कि गोल्ड फिश जैसी होती जा रही है। खैर, इन सबसे परे, इन सबसे इतर, आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार, खम्मा गणी और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके बेहद ही मन पसंदीदा और बेहद ही रोमांचक कार्यक्रम यानी कि आकाशवाणी के कार्यक्रम युववाणी में। जिस आवाज़ को फिलहाल आप सुन रहे हैं वो है मेरी यानी कि माधव की,
0: और मैं हूँ आपकी दोस्त शारदा। तो दोस्तों, आज का शो शुरू हो रहा है एक बहुत ही अहम, दिलचस्प और हम सबकी रोज़मर्रा की लाइफ से जुड़े एक शानदार टॉपिक के साथ,
1: जो कि है हम जो चीज़ें भूल जाते हैं उससे जुड़ा हुआ। शो की शुरुआत में ही जैसा कि आपने देखा कि जो शारदा के साथ हुआ, इसे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं ब्रेन फॉग यानी कि डिजिटल एमिनीशिया। और आज का हमारा विषय भी इसी के इर्द गिर्द है, यानी कि कॉग्निटिव हेल्थ और हमारी मेमोरी को शार्प बनाए रखने के लिए हम क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं, इन सब के बारे में।
0: ठीक कहा माधव। दोस्तों, हम युवा आज जिम जाते हैं बाइसेप्स बनाने के लिए, महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं स्किन केयर के लिए, लेकिन उस सुपर कंप्यूटर का क्या जो हमारे दिमाग में फिट है, जो लगातार एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, ऑफिस के प्रोजेक्ट्स और सोशल मीडिया के प्रेशर को हैंडल कर रहा है, उसकी सर्विस आखिर कौन करेगा?
1: बहुत सही कहा तुमने शारदा। दोस्तों, आप जानते हैं मल्टीटास्किंग और लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से हमारे दिमाग की जो फोकस करने की कैपेसिटी होती है बहुत कम हो जाती है। हमारा अटेंशन स्पैन अब लगभग आप ये मानिए कुछ सेकेंड्स का ही रह गया है। और यहीं पर शानदार होती है हमारी संस्कृति की यानी कि जो हमारे पूर्व छोड़ कर गए उस विरासत की।

0: हमारे पास एक ऐसा टूल है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, जिससे हम इन सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं, और वो एक साइंटिफिक टूल भी है, यानी कि योग।
1: कह तो तुम सही रहे हो माधव, लेकिन अक्सर युवाओं को लगता है कि योग का मतलब सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना या फिर मुश्किल मुश्किल पोज में खड़े होना है। योग हमारे दिमाग को कैसे तेज कर सकता है?
0: यही तो सबसे बड़ा मिथ है शारदा। विज्ञान भी दोस्तों अभी ये मान चुका है कि योग हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, यानी कि हमारा जो दिमाग है उसके खुद को रीवायर करने की क्षमता है उसको वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रेगुलर अगर आप योग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ता है। और दोस्तों ये हिप्पोकैम्पस कौन सा हिस्सा है? ये हिप्पोकैम्पस वो ही हिस्सा है जो आपकी मेमोरी और आपका कुछ नए सीखने की जो कैपेसिटी होती है उसको कंट्रोल करता है।
1: अरे वाह माधव, ये तो सच में किसी सुपर पावर की तरह है। तो अगर हमारे युवा श्रोता जो अभी शायद कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हों तो उन्हें शुरुआत कैसे करनी चाहिए?
0: इसका एक सबसे इजी रास्ता है स्टार्टिंग का ब्राह्मरी प्राणायाम।
1: अरे माधव, तुम हमारे दोस्तों को डराओ मत। दोस्तों इसे आसान भाषा में कहते हैं हमिंग बी ब्रेथ।
0: बिल्कुल, जब आप ब्राह्मरी करते हैं या मैं यूं कहूं हमिंग ब्री ब्रेथ करते हैं तो गले से जो की ध्वनि और वाइब्रेशंस पैदा होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देती है, शिथिल कर देती है। और दोस्तों ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन जो कि आजकल भाई साहब बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, कॉर्टिसोल को सबसे ज़्यादा कम करने में हमारी मदद करता है। और जब आपका स्ट्रेस कम होता है तो इवेंचुअली आपकी मेमोरी, आपकी अटेंशन सब कुछ तेज होने लगता है।
1: ये तो कमाल है। और एक तकनीक के बारे में तो मैंने भी पढ़ा है जिसे कहते हैं त्राटक।
0: भाई त्राटक बहुत शानदार तरीका है शारदा फोकस को बढ़ाने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा और बताओ।
1: तो दोस्तों त्राटक का मतलब है किसी एक बिंदु या मोमबत्ती की लौ पर बिना पलक झपकाए लगातार फोकस करना। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते वक्त कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये एक गेम चेंजर की तरह है। इससे एकाग्रता या कॉन्सेंट्रेशन पावर रॉकेट की तरह बढ़ जाती है।
0: क्या बात है, और ये सच है एकदम। मैंने भी त्राटक को पर्सनली यूज किया हुआ है दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जिसके अंदर अगर हम शारीरिक आसनों की बात करें जो योगा में बहुत सारे हम देखते हैं, जैसे सर्वांगासन, पश्चिम उत्तानासन, शीर्षासन, ये सारे बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं, क्योंकि इन सारे आसनों के अंदर इवेंचुअली आपका सिर नीचे की तरफ होता है जिससे आपके ब्रेन के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है।
1: ब्लड फ्लो यानी दिमाग को जब फ्रेश ऑक्सीजन और ब्लड मिलेगा तो नए और फ्रेश आइडियाज आ जाएंगे।
0: जाहिर सी बात है। और शारदा इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मुझे पर्सनली फील होती है कि हो सकता है कि अभी हमारे बहुत सारे श्रोता ये सोच रहे हो कि भाई कॉलेज क्लासेस, ऑफिस टाइमिंग, इन सब सारी चीज़ों से अगर हम फ्री हों तो योगा फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें ना।
1: ठीक कह रहे हो तुम माधव, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और टाइम मैनेजमेंट हमेशा एक कंसर्न ही रहता है।
0: बिल्कुल, और साथियों इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी हेल्थ हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है। इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकालना हमारी कंपल्शन या हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी नेसेसिटी है, हमें ऐसा करना चाहिए। और योगा के लिए आपको घंटों मैट पर बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, दिन के सिर्फ 10 से 15 मिनट इसके लिए इनफ है। आप अपने स्टडी टेबल पर या ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे भी जो 5 मिनट के अनुलोम विलोम की प्रक्रिया होती है उसको आराम से कर सकते हैं। और इसको करने से आपके ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर बैलेंस हो जाएंगे, कोर्टिसोल का लेवल गिरने लगेगा और इवेंचुअली आप हेल्दी फील करना लगेंगे।
1: बिल्कुल, और इसके साथ मैं भी एक चीज जोड़ना चाहूंगी दोस्तों, डिजिटल डिटॉक्स के साथ माइंडफुलनेस। जब भी लगे कि दिमाग ओवरलोड हो रहा है बस अपना फोन साइड में रखें, आंखें बंद करें और 5 गहरी सांसें लें और खुद को प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आएं। यह आपके ब्रेन के लिए एक रीस्टार्ट बटन की तरह काम करेगा।
0: और ये बहुत अच्छा तरीका है। आप जब भी आपको ऐसा लगे कि, और आजकल ना हम मोस्टली युवाओं में अब साथ में शारदा देखते हैं कॉलेज में स्टूडेंट्स की भी साथ में जो कंडीशन होती है कि बैठे बैठे हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो ब्रेन है वो बस स्टॉप हो गया, बस हम कुछ नहीं करना चाहते, कोई नहीं काम करना चाहते, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन हो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन दरअसल फॉग हो चुका है, पजल हो चुका है। तो उस वक्त आप अपने फ़ोन को साइड में रखें और बस थोड़ी देर आराम से बैठ जाएं और जो सामने है उसको देखने लगें।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों निष्कर्ष यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बुलेट ट्रेन की तरह दौड़े, क्रिएटिविटी अपने पीक पर रहे और एग्जाम के लिए जो पढ़ा हुआ है सब कुछ याद रहे तो योग को कोई टास्क नहीं बल्कि अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और दोस्तों याद रखिए आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका सबसे बड़ा अस्त्र है, इसमें इसके अंदर इन्वेस्ट करें, इसे इग्नोर नहीं। और जब भी आपको अपना दिमाग तेज रखने की बात आती है तो एक बात याद रखिए, जब आप खुश होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं तो आपका माइंड हमेशा अच्छा चलता है और हमारी जो

खुशी होती है वो आती है रिश्तों से। सो प्रेम करते रहें, अपने रिश्तों से प्रेम करें, आसपास के लोगों से प्रेम करें, वनस्पतियों से प्रेम करें, परिवार वालों से प्रेम करें, और जब आप इनसे प्रेम करेंगे तो इवेंचुअली आप पाएंगे कि आपकी सारी चीज़ें अच्छी होने लगेगी, हेल्दी होने लगेंगी।

0: हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: वेव ओटीटी पर बहुत अच्छे अच्छे शोज और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। रिसेंटली मैंने और तुमने देखे थे शारदा, तुम्हें याद है?
1: नहीं मुझे नहीं याद,
0: याद नहीं है, लेकिन मैंने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एक पर्टिकुलर शो था एंड इट वाज सो गुड ऑन वेव ओटीटी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, हर बार आकाशवाणी आपके लिए युववाणी के अंदर लेके आती है एक ऐसा सेगमेंट जो कि आपकी एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिसे आप कहते हैं क्विज सेगमेंट। और आज के क्विज सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर के आए हैं दो सवाल जिनका जवाब हम जानेंगे आपसे कार्यक्रम के अंत में। इसमें हमारा पहला सवाल आपसे है,
1: देश में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में आरंभ की गई?
0: और हमारा दूसरा सवाल आपसे है,
1: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
0: इन सवालों के जवाब आप खोज करके रखिएगा, हम आपसे थोड़ी ही देर में वापस आएंगे और मिलेंगे और तब हम आपसे जानेंगे इन सवालों के जवाबों को। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर हम ये बात करें कि दिमाग को तेज करने के लिए जब हम सप्लीमेंटल फूड्स, एक्सरसाइजेस, योगा की बात करते हैं, तो उससे पर एक और चीज़ है जो कि इन सबके रिजल्ट से निकल के आती है। इवेंचुअली हम सारी चीज़ों को मिला करके, सारे कामों को ये करके ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ का स्टेटस सुधरे, हमारी जो पहचान है वो सुधरे, हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज आए, वी कैन टॉक बेटर, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरे, हम हमारी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो सुधरे। तो लीडरशिप क्वालिटी कैसे सुधरेगी और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हम इनके अंदर ख्याल रख सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको अगर आप अपने रूटीन में, या मैं यूं कहूं कि आप अपने अंदर शामिल कर लें, तो वो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि उस भीड़ का चेहरा बना सकती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर हम युवाओं को लगता है कि लीडरशिप का मतलब है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी का बॉस होना या राजनीति में कोई बड़ा पद संभालना,
0: और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है शारदा। दरअसल लीडरशिप कोई पोजीशन, कोई कुर्सी या किसी कुर्सी का टाइटल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक एक्शन है। अगर आप कॉलेज के किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में खुद को आगे बढ़कर पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी लेते हैं, या घर के किसी मुश्किल फैसले में आपने अपने परिवार का साथ देते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने आप में एक लीडर हैं।
1: सही काम आता है तुमने। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मेरे मन में भी आता है और जरूर, मतलब मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों के मन में भी आता होगा कि एक अच्छा लीडर होता कौन है और वो बनता कैसे है?
0: जो इसका जवाब है ना शारदा देने के लिए, शायद मेरे पास तो उतना अच्छे से नहीं है, लेकिन एक बहुत महान अमेरिकी कोच हुए थे विंस लोम्बार्डी, और उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि लीडर्स जो है वो दरअसल पैदा नहीं होते, यानी कि बाय बर्थ नहीं होते, वो कड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। और एक बेहतरीन लीडर बनने की सबसे पहली सीढ़ी है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आप अपनी ही चीज़ों की जिम्मेदारी लेना शुरू करें। जब आप अपनी सफलताओं के साथ साथ अपनी गलतियों को भी खुले दिल से स्वीकारते हैं, तब असल में आप चीज़ों को लीड करना शुरू कर देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि लीडरशिप सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना, सबको एम्पैथी दिखाना, और ऐसी नहीं कि मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं, हम सब आगे बढ़ेंगे।
0: एग्जैक्टली, एक बॉस ऐसे कहता है जाइए और काम करिए, लेकिन एक लीडरशिप से भरपूर इंसान, एक लीडर की बात ऐसी होती है आइए इस काम को साथ मिलकर करते हैं और बेहद अच्छे से करते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ बहुत एनालिटिकल और ज़रूरी है, वो है डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। क्राइसिस के वक्त जब सब पैनिक कर रहे होते हैं, तब शांत दिमाग से सही फैसला लेना ही एक असली लीडर की पहचान होती है।
1: बिल्कुल, लेकिन हमारे श्रोताओं को ये तो बताओ कि हम इस जो ये क्वालिटी है लीडरशिप, उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल टिप?
0: बहुत ही मैं ये कह सकता हूँ शारदा, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहला इनिशिएटिव लेना सीखें। और इनिशिएटिव कौन सा लें? सबसे पहले तो ये लें कि कम्फर्ट जोन से बाहर आए, किसी डिबेट में हिस्सा लें, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करें, हालांकि अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो भी कोशिश करें। और सबसे अहम बात, दुनिया को लीड करने से पहले खुद को लीड करना सीखें। जिस दिन आप अपने खुद के बनाए टाइम टेबल, अपने डिसीजंस, अपने डिसिप्लिन और अपने कमिटमेंट्स पर खरे उतरने लगेंगे, दोस्तों मान करके चलिए दुनिया आपको खुद ब खुद फॉलो करना शुरू कर देगी।
1: क्या तो ठीक रहे हो तुम माधव, खुद पर जीत ही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों इंतजार मत कीजिए कि कोई आकर आपको लीडर का बैच पहना जाएगा, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद अपने हाथों में लीजिए।
0: बिल्कुल, और आपको लीड करने से जो चीजें रोकती है, दरअसल वो होता है हमारे खुद के ही ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव विचार। और नेगेटिव विचार क्या होते हैं? काम, क्रोध, ईर्ष्या, एंजाइटी, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को रोक लेती है। तो इसके बचने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो है अटेंटिवनेस। आप खुद ब खुद होशियार रहिए और

मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

0: साथ।
1: और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: माधव, आज के समय में स्वस्थ रहना हर व्यक्ति की प्राथमिकता बनता जा रहा है, और इसी के साथ साथ एक और विषय है जो लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, और वो है खेल और फिटनेस संस्कृति।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आजकल जो इंटरेस्ट है, लोग अब सिर्फ गेम्स को फिटनेस से रिलेट करके नहीं देखते, बल्कि इसको देखते हैं कि ये एक एंटरटेनमेंट का, ये एक पॉजिटिविटी का, ये एक डिसिप्लिन का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, जो फिटनेस है, जो गेम है, जो भी स्पोर्ट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फिट नहीं रखते, बल्कि ये आपको मेंटली एक्टिव भी रखते हैं, आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखते हैं, और आपको पहले से ज्यादा जागरूक और अटेंटिव भी रखते हैं।
0: सही कहा माधव। दोस्तों, खेल हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देते हैं, वो हमें अनुशासन सिखाते हैं, टीम वर्क सिखाते हैं, धैर्य और आत्मविश्वास जैसी महत्वपूर्ण बातें भी सिखाते हैं, और यही कारण है कि विद्यालय और महाविद्यालयों में खेल गतिविधियों को विशेष महत्व दिया जाता है।
1: और इसके साथ साथ ही नियमित शारीरिक गतिविधियां हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करती है। रोजाना थोड़ी देर की एक्सरसाइज, योगा, दौड़ या किसी भी खेल में भाग लेना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है।
0: सही कहा। आजकल फिटनेस कल्चर का प्रभाव समाज में साफ दिखाई देता है। लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं और योगा भी करते हैं। इन गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना
1: लोग बना रहे हैं, और ये चीज बहुत अच्छी है आज के टाइम में। और इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण ये भी है शारदा, कि आधुनिक जीवन शैली में लोगों की जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो बहुत कम हो गई है। लंबे समय तक बैठ करके काम करना और मोबाइल या कंप्यूटर का अधिक उपयोग करना, ये सब सारे के सारे मिल करके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डाल रहे हैं, और ऐसे में फिटनेस पर ध्यान देना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
0: सही कहा। भारत में भी खेलों के प्रति लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है। क्रिकेट के साथ साथ बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी और एथलेटिक्स और अन्य खेलों में भी युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं।
1: बिल्कुल, और साथ साथ इसके अंदर सरकार द्वारा भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई है, जैसे खेलो इंडिया और भी कई योजनाओं का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना विकसित करना और प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देना है। लेकिन दोस्तों, इसमें मुझे

0: ऐसा लगता है कि आज से अगर कुछ साल पहले तक आप देखेंगे तो बच्चों को खेलने के लिए कहना नहीं पड़ता था, वे स्वतः ही शाम होते ही गली में बैट बॉल लेकर के दौड़ पड़ते थे खेलने के लिए। लेकिन आज कल मुझे लग रहा है कि अगर हमें उनको इस चीज़ के लिए प्रोवोक करना पड़ रहा है, इस चीज़ के लिए हमें उन्हें इनिशिएटिव लेने के लिए कहना पड़ रहा है कि जाइए और खेलिए, तो इसका सबसे बड़ा अगर कहीं कारण है तो वो है डिजिटल डिपेंडेंस। बढ़ती डिजिटलाइजेशन के साथ साथ फ़ोन का और मोबाइल फ़ोन स्क्रीन जो स्क्रोलिंग स्क्रीन टाइम जो है वो इतना बढ़ गया है कि अब बच्चे मोबाइल पर टाइम बिताना ज़्यादा बेहतर और उनको एक ज़्यादा ईजी विकल्प लगता है, जो कि जाहिर सी बात है बहुत अच्छा ना उनकी हेल्थ के लिए है ना ही हमारी सोसाइटी के लिए। इसी समाज में बढ़ती डिजिटल निर्भरता के ऊपर आइए हम जानते हैं एक वार्ता, जिसमें वार्ताकार रहने वाले हैं हमारे साथ श्री मनोज जी सोनी, आइए जानते हैं।
1: सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ ईश्वर का ध्यान प्रकट करने में न जुड़कर तकिए के पास रखे मोबाइल को टटोलता है, तुरंत उंगलियां रील्स पर फिसल जाती है, ब्रश के समय न्यूज ऐप, नाश्ते के साथ सोशल मीडिया, दिन भर UPI और रात को सोने से पहले

0: डिपेंडेंस। बढ़ती डिजिटलाइजेशन के साथ साथ फ़ोन का और मोबाइल फ़ोन स्क्रीन जो स्क्रोलिंग स्क्रीन टाइम जो है वो इतना बढ़ गया है कि अब बच्चे मोबाइल पर टाइम बिताना ज़्यादा बेहतर और उनको एक ज़्यादा ईजी विकल्प लगता है, जो कि जाहिर सी बात है बहुत अच्छा ना उनकी हेल्थ के लिए है ना ही हमारी सोसाइटी के लिए। इसी समाज में बढ़ती डिजिटल निर्भरता के ऊपर आइए हम जानते हैं एक वार्ता, जिसमें वार्ताकार रहने वाले हैं हमारे साथ श्री मनोज जी सोनी, आइए जानते हैं।
1: सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ ईश्वर का ध्यान प्रकट करने में न जुड़कर तकिए के पास रखे मोबाइल को टटोलता है, तुरंत उंगलियां रील्स पर फिसल जाती है, ब्रश के समय न्यूज ऐप, नाश्ते के साथ सोशल मीडिया, दिन भर UPI और रात को सोने से पहले सीरियल का एक एपिसोड। वर्तमान दौर में यह किसी एक व्यक्ति की नहीं अपितु 90 करोड़ भारतीयों की आम कहानी बन चुकी है। आधुनिक भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर रास्ता डिजिटल सिग्नल से होकर गुजरता है। तकनीक अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि खुद जिंदगी बन चुकी है। कोरोना महामारी से जो बदलाव 10 साल में आने वाले थे उसने वो सब 2 साल में ही ला दिए। ऑनलाइन क्लास टेलीमेडिसिन ने साबित कर दिया कि डिजिटल के बिना दुनिया थम सकती है। भारत में हर महीने अनुमानित 20 लाख करोड़ रुपए का लेन देन UPI से होता है, यानी देश की आधी आर्थिक गतिविधि एक ऐप पर टिकी है। पर सवाल यह है कि क्या हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या तकनीक हमारा इस्तेमाल कर रही है। जब सुविधा आदत बन जाए और आदत मजबूरी, तो रुक कर सोचने का वक्त आ जाता है। आधुनिक युग में बढ़ती डिजिटल निर्भरता की स्थिति से हमें इसकी दशा और दिशा पर चिंतन मनन करना लाजमी हो गया है। आइए देखते हैं किन किन क्षेत्रों में डिजिटल निर्भरता ने समाज को आच्छादित कर रखा है और इसके स्वरूप को समझते हैं। हमारा जीवन आर्थिक स्वावलंबन से डिजिटल स्वावलंबन तक। एक समय था जब कर्मचारी को बैंक जाने के लिए आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी, पासबुक अपडेट करने के लिए लाइन, चेक क्लियर होने का इंतजार और बिजली बिल जमा करने के लिए धूप में खड़ा रहना आम बात थी। पर आज कुछ सेकंड में मोबाइल से लाखों का ट्रांसफर हो जाता है। सब्जी वाला, रिक्शा वाला, मंदिर का पुजारी, सबके पास QR कोड है। इस बदलाव ने छोटे व्यापारी को पंख दिए हैं। शहर की महिला ऐप पर अचार बेचकर महीने के हजारों रुपए कमा रही है, तो एक दर्जी सोशल मीडिया पर अपनी डिजाइन दिखाकर विदेश तक कुर्ते भेज रहा है। किसान ऑर्गेनिक खेती सीखकर अपने उत्पाद शहरों में बेच रहा है। AI क्रांति ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। शेयर मार्केट, जो कभी दलाल स्ट्रीट के बड़े लोगों का खेल था, आज आम आदमी की अप्रोच में है। डिजिटल भुगतान ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। मजदूरों की मजदूरी, किसान सम्मान निधि और सरकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में आ जाती है। बिचौलिए गायब हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ब्लैक बोर्ड से ब्रांडेड तक, 5 वर्ष के लॉकडाउन ने शिक्षा की परिभाषा ही बदल दी है। कोटा की कोचिंग अब मोबाइल में आ गई। एकलव्य की तरह आज का छात्र ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ रहा है। NPTEL और स्वयं जैसे पोर्टल से गांव का बच्चा IIT के प्रोफेसर का लेक्चर मुफ्त सुन सकता है। दिव्यांग छात्रों के लिए तो डिजिटल दुनिया वरदान है। स्क्रीन रीडर से नेत्रहीन विद्यार्थी किताबें पढ़ रहे हैं। वीडियो सबटाइटल से मूक बधिर बच्चे समझ लेते हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने भौगोलिक दूरियां मिटा दी है। अब सफलता के लिए दिल्ली मुंबई जाना जरूरी नहीं। सुदूर लेह लद्दाख में बैठी लड़की हार्वर्ड की ऑनलाइन क्लास कर सकती है। डिजिटल दुनिया में सामाजिक ताना बाना भी बदला है। गांव की गली मोहल्ले से ग्लोबल विलेज तक की रंगीन दुनिया सब डिजिटल का कमाल है। रिश्तों का पता बदल गया है। पुराने दोस्त सोशल मीडिया से मिल जाते हैं। अमेरिका में बैठा बैठा रोज वीडियो कॉल पर परिवारजनों से बात कर लेता है। त्योहार पर घर नहीं आ पाए तो सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके मुबारकबाद दे देते हैं। आपदा में डिजिटल माध्यम संजीवनी बन जाता है। सन 2023 में बाढ़ में सोशल मीडिया ने हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की है। रक्त की जरूरत हो तो एक ट्वीट पर दर्जनों जन तैयार मिल जाते हैं। डिजी लॉकर ने कागजों का झंझट खत्म कर दिए हैं। मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार सब

फोन में सुरक्षित हो चुके हैं। अब RTI ऑनलाइन फाइल होती है और सरकारी टेंडर वेबसाइट पर हो जाते हैं। खरीदारी और निविदाएं भी ऑनलाइन ही की जाती है। इस डिजिटलीकरण ने बाबू संस्कृति पर सीधा प्रहार किया है। फाइल अटकने की जगह अब जवाबदेही तय होने लगी है। ये सब समाज में डिजिटल निर्भरता का जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं। डिजिटलीकरण से पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिला है। अब ऑनलाइन बिलिंग होने से कागज की खपत में कमी आई है, तो सीधे सीधे पेड़ों की कटाई को रोकने का संदेश देती है। इस प्रकार ऑनलाइन मीटिंग होने से पेट्रोल डीजल आदि ईंधन बचत के साथ साथ समय और मानव श्रम की बचत भी हुई है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे हमारा समाज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डिजिटल कारणों से प्रभावित हुआ है। निर्भरता के परिणाम वरदान के साथ छिपा अभिशाप। हर तकनीकी क्रांति अपने साथ अवसर और चुनौतियां दोनों लाती है। डिजिटल निर्भरता भी इसका अपवाद है। अनेक समस्याएं हमारे सामने मुंह उबाए खड़ी है जिसका समाधान जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पर हमला डोपामाइन का नया नशा। हमारा दिमाग डोपामाइन नामक केमिकल से चलता है। जब भी नोटिफिकेशन आता है लाइक मिलता है, रील्स का अगला वीडियो चलता है, दिमाग और डोपामाइन का एक शॉट मिलता है, धीरे धीरे इसका आदि हो जाता है। नतीजतन हम दिन में 144 बार यानी हर 7 मिनट में फोन चेक करते हैं। वैज्ञानिक इसे नोमोफोबिया कहते हैं, यानी नो मोबाइल फोबिया। फोन की बैटरी 20% से कम होते ही बेचैनी, नेटवर्क ना मिले तो घबराहट, और 2 घंटे फोन नहीं दिखे तो लगता है दुनिया छूट गई। 2025 के निमहंस सर्वे के अनुसार 16 से 24 आयु वर्ग के 42% युवा एंग्जाइटी और डिप्रेशन की शिकार बन गए हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की फिल्टर वाली जिंदगी देखकर अपनी असली जिंदगी से नफरत। रील्स की 15 सेकंड की संस्कृति ने अटेंशन स्पैन खत्म कर दिया है। आज का छात्र 45 मिनट का लेक्चर नहीं सुन पाता, एक पन्ना किताब नहीं पढ़ पाता, उसे हर 30 सेकंड में नया उत्तेजना चाहिए। टेक्स्ट नेक अब एक नई बीमारी है। लगातार फोन में जागने से गर्दन की हड्डी टेढ़ी हो रही है। 25 साल के युवाओं को सर्वाइकल हो रहा है। नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को मार देती है जिससे नींद नहीं आती। रात 2 बजे तक स्क्रॉल करना और सुबह थका हुआ उठना सामान्य बात हो गई है। बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। आंखों का नंबर 10 साल की उम्र में ही बढ़ रहा है। हम इतिहास की सबसे कनेक्ट और अकेली पीढ़ी हैं जिसके सोशल मीडिया पर 500 ग्रुप है, पर दिल की बात करने वाला एक दोस्त भी नहीं। परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और सबकी प्लेट के पास अलग अलग फोन रखा है। नजरें स्क्रीन पर, दिमाग कहीं और। बुजुर्ग अकेले पड़ गए हैं। पोता पास बैठकर भी फोन में है। दादा दादी की कहानियों की जगह सोशल मीडिया के कार्टून ने ले ली है। बच्चों में सहनशीलता खत्म हो रही है। गेम में हारते ही फोन पटक देते हैं। असल जिंदगी में यह छोटी सी डांट बर्दाश्त नहीं है। एल्गोरिदम का जाल सबसे खतरनाक है। सोशल मीडिया में हमें वही दिखता है जो हम पहले से मानते हैं। धीरे धीरे हम इको चैम्बर में कैद हो जाते हैं। अलग राय सुनते ही गुस्सा आता है। इसी का नतीजा है कि एक संदेश फॉरवर्ड होते ही दंगे हो जाते हैं। हम सूचना की युग में रहकर भी ज्यादा गलत सूचना की शिकार हैं। सुरक्षा और संप्रभुता का संकट। अगर आप प्रोडक्ट के पैसे नहीं देते तो आप खुद प्रोडक्ट हैं। हमारा डाटा, लोकेशन, सर्च हिस्ट्री, बातचीत, फोटो दुनिया का नया खेल है। 2024 में 30 करोड़ भारतीयों का डाटा डार्क वेब बिका। साइबर अपराधी नई महामारी है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिटायर्ड बुजुर्गों से पसीने से कमाई के करोड़ों ठगे जा रहे हैं। एक अनजान लिंक, एक OTP और जिंदगी भर की कमाई 10 मिनट में साफ। यह रोजमर्रा की जिंदगी में आम बात हो चुकी है। डीप फेक वीडियो से किसी की इज्जत मिनट में तार तार हो सकती है, और इससे भी बड़ा खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा है। हमारी बैंकिंग, बिजली, रेलवे, अस्पताल सब इंटरनेट से जुड़े हैं, और कोई दुश्मन देश सबसे बड़ा साइबर अटैक कर दे तो करोड़ों लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। हमने सुविधा के नाम पर अपनी संप्रभुता दांव पर लगा दी है, पर इन सब के बावजूद डिजिटल क्रांति के सकारात्मक प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।

0: तकनीक को कोसना समस्या का हल नहीं है। आग खाना भी पकाती है और घर भी जलाती है, पर समझदारी आग बुझाने में नहीं उसे काबू करने में है। लोहे की सुई से जोड़ने का काम होता है तो इसी लोहे से बनी तलवार विध्वंस का कार्य भी करती है, अर्थात चीजों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना पड़ेगा। कुछ उपाय से डिजिटल निर्भरता से उपजी समस्याओं पर लगाम लगाई जा सकती है। चैम्बर में कैद हो जाते हैं, अलग राय सुनते ही गुस्सा आता है, ये उपाय करने होंगे। समय का बजट, वैसे स्क्रीन टाइम का बजट बनाना चाहिए जैसे समय का बजट बनाया जाता है। दिन में सोशल मीडिया के लिए मिनिमम समय निर्धारित करके उसकी सख्ती से पालन किया जाए। सूरज ढलने के बाद स्क्रीन बंद और डिजिटल सनसेट घोषित करना पड़ेगा। रात 9 बजे मोबाइल दूर रखकर परिवार संग समय बिताना होगा। डिजिटल साक्षरता, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ साइबर हाइजीन बढ़ाना होगा। गांव-गांव में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लोगों को साइबर संबंधी जानकारी देनी चाहिए। हमें जिंदगी के हर क्षेत्र में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन विकल्प भी जिंदा रखना होगा। बैंक, अस्पताल, राशन की दुकान, टिकट काउंटर, हर जगह डिजिटल के साथ साथ मैनुअल सिस्टम भी चलना चाहिए। सर्वर डाउन हो तो किसी गरीब का बच्चा भूखा न सोए। तकनीक हमारा विकल्प है, मजबूरी नहीं बने। कबीर दास जी ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार को सही लगे थोथा दे उड़ाए। डिजिटल युग में हमें सूप बनना है। ज्ञान, सुविधा, रोजगार तकनीक तलवार की तरह है, सज्जन के हाथ में जान बचाती है और डाकू के हाथ में जान ले लेती है। गलती तलवार की नहीं, हाथ की है। मोबाइल में हाथ में अच्छा लगता है, पर वह दिमाग पर हावी हो जाए तो बेड़ी बन जाता है। याद रखना, हर सवाल का जवाब दे सकता है, पर माँ के आंचल की ममता नहीं दे सकता। UPI में 1 सेकंड में पेमेंट हो सकता है, पर दोस्त के कंधे का सहारा नहीं मिल सकता। कविता लिख सकता है, पर दिल का दर्द नहीं समझ सकता। इसीलिए डिजिटल बनिए, पर ये नहीं कि इंसान होना भूल जाए। संतुलन ही सदी का मंत्र है। तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, पर जिंदगी जीना मत भूलिए। कर दिए लगाम अपने हाथ में रखिए, तभी घोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। पढ़ना पटक देगा, डिजिटल नहीं। पता तभी प्रगति है जब हम उसके मालिक बने, गुलाम नहीं।
1: बिल्कुल। और साथियों, कभी कभी जब हम आज के मौसम को देखते हुए बात करते हैं तो हमें यह लगता है कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भारत की कई नदियाँ इसके अंदर अपना बहुत अहम रोल अदा करती है। अपनी ऐतिहासिक और प्राकृतिक विशेषताओं के लिए जो सबसे ज़्यादा जाने वाली नदी है वो है चंबल नदी। आइए जानते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी जो कि उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी भी है।
2: सही का दोस्तों, चंबल नदी का नाम सुनते ही अक्सर लोगों को मन में एक इसके बीहड़ इलाके और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य आते हैं। लेकिन यह नदी केवल अपनी पहचान के लिए नहीं बल्कि अपने एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस के लिए भी जानी जाती है।
1: इसके साथ साथ चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित एक जगह जानापाव पहाड़ी से होता है। वहां से यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और अंत में यमुना नदी में मिल जाती है।
2: दोस्तों, लगभग 960 किलोमीटर लंबी यह नदी यमुना की एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है, यानी एक सहायक नदी है। जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल, बिजली उत्पादन जैसे कई कार्यों में किया जाता है।
1: और इसके साथ साथ चंबल नदी की शारदा सबसे खास बात यह है कि इसे भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक माना जाता है। अन्य कई नदियों की तुलना में इसका पॉल्यूशन लेवल काफी कम देखने को मिलता है।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि चंबल नदी कई दुर्लभ जलीय जीवों की का सुरक्षित घर भी है। यहाँ घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए और गंगा डॉल्फिन जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: बिल्कुल, और इसीलिए इन जीवों की सुरक्षा के लिए नेशनल चंबल सेंचुरी की स्थापना भी यहाँ पर की गई। दोस्तों, ये अभयारण्य 3 राज्यों यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा फैला हुआ है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह माना जाता है। लेकिन जब जब राजस्थान का नाम कहीं पर भी सुनते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतनी ज़्यादा छवि नहीं बनाती जितनी ज़्यादा कला, साहित्य और संस्कृति बना लेता है। हम आज जो भी हैं या हमारा आज का जो भी कल्चर है, स्पेशली राजस्थान, बाड़मेर, बीकानेर के बेल्ट के अंदर रहने वाले लोगों का, ये कुछ भी नहीं है सिवाय हमारी जो पूर्वज है उनकी विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2: बिल्कुल सही कहा माधव तुमने। दोस्तों, हर देश की पहचान केवल उसके वर्तमान से नहीं बल्कि उसकी विरासत से भी बनती है। हमारी विरासत में हमारी

0: संस्कृति, हमारी परंपराएं, भाषाएं, कला, स्मारक और जीवन मूल्य शामिल है, और यही विरासत हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है।
1: और भारत एक ऐसा देश है जिसकी सांस्कृतिक विरासत हजारों वर्षों पुरानी है। हमारे त्योहार, लोक कलाएं, ऐतिहासिक स्मारक और पारंपरिक ज्ञान आज भी हमारी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं।
0: सही कहा, लेकिन बदलते समय के साथ ये भी जरूरी है कि हम अपनी विरासत को केवल इतिहास की किताबों तक सीमित न रखें, हम उसे अपने आज के जीवन से भी जोड़ना चाहिए।
1: जब हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं दोस्तों, लोक कलाओं को बढ़ावा देते हैं, पारंपरिक हस्तशिल्प का उपयोग करते हैं या अपने ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तब वास्तव में सही मायने में हम हमारी विरासत को, हमारे पूर्वजों के काम को इज्जत देते हैं। आइए वक्त हो चला है हमारे क्विज के आंसर्स को जानने का भी, जानते हैं हमारे क्विज के आंसर्स को भी। हमारा पहला सवाल आपसे था,
0: देश में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में आरंभ की गई, तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश।
1: और हमारा दूसरा सवाल आपसे था,
0: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और इसका जवाब है वियना।
1: साथियों, अगर आपका जवाब सही है तो आपको बहुत बहुत बधाई, और अगर जवाब सही नहीं है तो निराश होने की कोई बात नहीं है, आप प्रयास करते रहें। कल फिर से हमारी से कार्यक्रम में आपसे दो सवाल पूछे जाएंगे, उम्मीद है तब आपके जवाब जरूर सही निकलेंगे। अगर आपके जवाब सही निकले, एक बेहतरीन रोजगार सूचना का नोटिफिकेशन जारी किया गया RPSC के द्वारा, आइए उसको जानते हैं। RPSC के द्वारा एक RAS भर्ती 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर इसके अंतिम तिथि की बात की जाए तो वो रहने वाली है 3 जुलाई 2026, और आप अप्लाई कर सकते हैं rpsc.rajasthan.gov.in के ऊपर जाकर। उम्मीद है अगर आपने अपने जीवन को एक सही दिशा देने का निर्णय कर चुके हैं तो आप जरूर इसमें अप्लाई करेंगे। साथियों, ख्याल रखें अपना।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
6: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
5: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
6: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
5: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
6: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
5: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
6: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
5: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
6: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
1: कल फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी बेहतरीन शो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्रामीण जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7:00। हमारे श्रोता वाद्य संगीत सुन रहे हैं लेकिन साथ में सुगम संगीत भी आप सुन सकते हैं 7:45 पर।

0: चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आज आप सुनेंगे पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले से ख्याल गायन। समय रहेगा रात्रि 10:30। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। इस समय संध्या के 6:00 बजने को है। अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 200

0: 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है धरती।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

Akashwani at 90. फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है शोर।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है लोफर।

0: फिल्म लोफर के मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को हैं। थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों की आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीवरेज सफाई के लिए सुपर सकर मशीन, कचरा उठाने के लिए अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन को रवाना किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की जन जागरूकता के लिए ब्रांडिंग ऑटो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजधानी जयपुर के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे।
2: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
1: समारोह में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का माध्यम बन रहे हैं।
2: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
1: पचपदरा रिफाइनरी

0: से राजस्थान देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगा, साथ ही ये प्रोजेक्ट प्रदेश का ग्रोथ इंजन साबित होगा। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर हुई पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उच्च स्तरीय बैठक में कही। श्री शर्मा ने रिफाइनरी की प्रगति और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही रिफाइनरी का शुभारंभ करेंगे। बैठक के दौरान HRRL प्रबंधन की ओर से मुख्यमंत्री को रिफाइनरी से निकल रहे विभिन्न उत्पादों के नमूने भेंट किए गए। गौरतलब है कि रिफाइनरी से कई प्रकार के प्रोडक्ट्स का उत्पादन शुरू हो चुका है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विशेष अभियान शुरू किया गया है। 5 जुलाई तक चलने वाला यह अभियान महिला और बाल विकास विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक की स्थापना के साथ प्रवेशोत्सव और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने अपने क्षेत्र में घर घर संपर्क कर जन समुदाय को खिलौना बैंक की जानकारी देंगी। 3 से 6 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों का चिन्हीकरण कर अभिभावकों को 1 जुलाई के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को सुबह 9 बजे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक का शुभारंभ होगा। RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौर ने आज जयपुर लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाव बागड़े से मुलाकात की। श्री बागड़े ने उनकी शिष्टाचार भेंट थी। गौरतलब है कि आयोग के सदस्य श्री केसरी सिंह को हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने CA इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में डोंबिवली के शार्दुल शेखर विचारे ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। अभिनव सतीश ने दूसरा और तीर्थ जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का मुख्य परिणाम आज जारी हो सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आज हुई बैठक में वीडियो भर्ती के अंतिम परिणाम का अनुमोदन किया गया। इस बीच बोर्ड ने आज सुबह कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नतीजे जारी किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 1967 में पासपोर्ट अधिनियम लागू होने के उपलक्ष में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा और सशक्त नागरिक के संकल्प को दोहराना है। देश 2014 में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या के साथ 77 था, जो अब बढ़कर 545 हो गई है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर पेश है समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
1: पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे छोटे और दूर दराज के शहरों के लोगों को आसानी से पासपोर्ट मिल सके। हाल ही में हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि देश में पासपोर्ट की बढ़ती तादाद बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या बढ़कर 138 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि अब पासपोर्ट मुहैया कराने की प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। ये विकसित भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है।
0: भारतीय सेना की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। नागरिकों को जागरूक करने और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। इसके जरिए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना सेना तक पहुंचाने की प्रक्रिया समझाने और आपदा के समय नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के संगराना 24 और 25 आरबी गांवों से इस ट्रेनिंग की

शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। डीग जिले के कामा क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार कार ने करीब 10 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के शिकार लोग तीर्थराज विमल कुंड की परिक्रमा कर पैदल जा रहे थे। सभी घायलों को कामा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक हुई इस घटना से भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। प्रदेश में प्री मॉनसून की बरसात कई जिलों

0: में असामान्य बरसात हुई है। 3 जिलों में अधिक पानी बरसा है, वहीं 3 में सामान्य और 9 जिलों में सामान्य से कम बरसात हुई है। मौसम विभाग ने आज भी 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कल उदयपुर को छोड़कर सभी संभागों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने के आसार हैं। 28 जिलों में येलो और श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। इस बीच आज हनुमानगढ़ में दोपहर बाद मौसम बदला और धूल का गुबार छा गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: हनुमानगढ़ जिले में लगभग 2 हफ्ते से लगातार दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आता है तथा धूल भरी आंधी व कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। इससे आम जन को हीट वेव से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि वीरानी इलाके में लगातार 2 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोठ मूंग, ग्वार, मूंगफली, बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कृत करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। इन स्थानों से अवैध पार्किंग हटाने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन की ओर से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है। आयोग ने बताया कि इस वर्ष के चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद विजेता स्टार्टअप को 3.5 लाख रुपए का सीड ग्रांट मिला, वहीं उपविजेताओं को 2,20,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों को आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनेक रेल परियोजनाओं और रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों पर काम चल रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीकानेर के डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय विधि तथा न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी भाग लिया। दोनों मंत्रियों ने आमजन के साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन में योग के महत्व पर बल दिया। योग दिवस से पहले भी जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुर्वेद विभाग के विद्यार्थियों ने जूनागढ़ किले और पब्लिक पार्क में योगाभ्यास कर लोगों को योग अपनाने का संदेश दिया। वहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी जूनागढ़ किले में सामूहिक योगाभ्यास किया। अधिकारियों और जवानों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। जिले में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आम जन को राहत पहुंचा रहे हैं। शिविरों में लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भूमि संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रमाण पत्रों और लोगों की अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। रामसरा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में घुमंतू सासी समाज के कुछ परिवारों को निशुल्क आवासीय भूखंड के पट्टे प्रदान किए गए। वर्षों से स्थायी आवास के अभाव में जीवन यापन कर रहे इन परिवारों को अब अपना घर बनाने का आधार मिल गया है। लाभार्थियों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत के प्रति आभार व्यक्त किया। उधर पशुपालकों के लिए भी सेवा शिविर उपयोगी साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कई पशुपालकों ने अपने दुधारू पशुओं का बीमा कराया। पांचू क्षेत्र के बंदड़ा गांव में आयोजित शिविर में पशुपालकों को योजना की जानकारी दी गई और मौके पर ही बीमा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धतियों, जैविक संसाधनों के उपयोग और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है। कृषि विभाग द्वारा जिले में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए कृषि सखियों और प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे गांव-गांव तक इसकी जानकारी पहुंचा सके। जल संरक्षण को लेकर भी जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, बारिश के पानी का संचयन और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुई। लोगों को पानी के संरक्षण और जल स्रोतों की देखभाल के लिए प्रेरित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला परिषद परिसर में एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर भी पौधरोपण किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से श्री डूंगरगढ़ में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े पात्र परिवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 4 जुलाई न जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए बेगाई खिलौना बैंक शुरू करिया जावेला। और देश माए नहना और दूर दराज रा शहरा री जनता ताई पासपोर्ट रो सुविधो पुगावन सारू पासपोर्ट सेवा केंद्र रा नेटवर्क माए लगातार बढ़ोतरी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर।

अपनी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बीकानेर जिले में इन दिनों जल संरक्षण, शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर, कृषि, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। मॉनसून की आहट के बीच किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के प्रयास जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बड़ी संख्या में

0: अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर विधानसभा हलका माए विकास रा 631 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाला कामा री शुरुआत कीनी और पूरा भिया काम जनता ने सौंपया। ई मौके राखी ज्या कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री नालियां री सफाई सारू सुपर सकर मशीन कचरो भेड़ो करण री नुवी मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन ने रवाना कीनी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 रा बारा माए जाग जगावन रा मकसद ब्रांडिंग ऑटो रिक्शा नई हरी झंडी बतार रवाना कीना। श्री शर्मा पात्र लोगों ने जमीन रा हक वाला स्वामित्व कार्ड ही दीना। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री कहो कि सरकार राजधानी जयपुर रा विकास सारू लगातार काम कर रही है। वे बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत करेला।
1: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
0: शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरां रो जिक्र करता थका मुख्यमंत्री कहो कि ऐ शिविर जनतारी परेशानियां तुरंत आगे करण रा जरिया बन रहा है।
1: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
0: कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जयपुर रे सांसद मंजू शर्मा समेत जनता रा कई नुमाइंदा और मोटी तादाद में जनता मौजूद रही। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज मारा रहवास माथे अहलकारा सागे मीटिंग कर पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम रे प्रगति रे बारा माए विगतवार जानकारी लीनी। मीटिंग में श्री शर्मा कहो कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान देश री ऊर्जा हिफाजत रो मजबूत खंभो बनवा सागे प्रदेश रो ग्रोथ इंजन साबित हुएला। राज्य रा आंगनबाड़ी केंद्र माए 3-6 साल उम्र ताईं रा बच्चा सारू शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रो खास अभियान चलाई चियो है। महिला और बाल विकास विभाग री ओर 5 जुलाई ताईं चलाया जावन वाला ई अभियान रा तहत आंगनबाड़ी केंद्र माए खिलौना बैंक खोलन सागे प्रवेशोत्सव और पौधा रोपण रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा निदेशक वासुदेव मालावत बतायो कि 30 जून ताई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकारी मदद घर घर जार खिलौना बैंक री जानकारी दी जावेला। इस आगे 3-6 साल ताई रा स्कूल नी जा रहा बच्चा ने पछाण कर वारा मायता ने 1 जुलाई ने आंगनबाड़ी केंद्र माए खिलौना बैंक री शुरुआत रा कार्यक्रम सारू न्योतो दियो जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग रा कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह आज जयपुर रा लोक भवन माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े शिष्टाचार भेंट कीनी। आयोग रा सदस्य केसरी सिंह ने हाल ही माए कार्यवाहक अध्यक्ष री जिम्मेदारी दीरी जी है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI मई 2026 माए लीरी जी CA इंटरमीडिएट परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। परीक्षा माए डोंबिवली रा शार्दुल शेखर विचारे अव्वल रहा, अभिनव सतीश दूजी और तीर्थ जैन तीजी ठौड़ माथे रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। बोर्ड रा अध्यक्ष आलोक राज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा रो मुख्य परिणाम रो ऐलान ही आज जारी भेवन रा आसार जताया। वे बतायो कि आज भी मीटिंग में VDO परीक्षा रा अंतिम परिणाम ने मंजूरी दे दी जी। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप

0: एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ओ दिन साल 1967 माए पासपोर्ट कानून लागू हेवन री याद माए मनायो जावे है। इन रो खास मकसद सुरक्षित पासपोर्ट, आसान सेवा और मजबूत जनता रा संकल्प रो दोहराव है। पासपोर्ट सेवा दिवस रे बारा माए पेश है समाचार कक्ष सालेहा गाजी री रपट।
1: पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र री पहुंच लगातार बधाई जा रही है। जिनो नाना और दूर दराज रा शहरा रा लोगा ने ई आसानी ओ पासपोर्ट मिल रहा है। हाल ही माए व्या क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन माए विदेश मंत्री एस जयशंकर बतायो कि देश माए पासपोर्ट री बढ़ती तादाद उम्मीद माए बढ़ोतरी रो दर्शाव करे है। माली साल 2025-26 माए पासपोर्ट री तादाद बधर 138 लाख वेगी। वे बतायो कि पासपोर्ट मुहैया करावन री प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। आ विकसित भारत बनावन रा काम माए प्रेरणा देवन वाली खास ताकत रा तौर काम कर रही है।
0: फौज री ओर श्री गंगानगर जिला रा सरहदों लाग्योड़ा संगराना 24 और 25 आरबी गांव माए जनता माए जाग जगावन और सुरक्षा सहयोग मजबूत करन रा मकसद वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाई चियो है। इन जरिए शंका लायक हलचल री जानकारी फौज ताई पुगावन री प्रक्रिया बतावन और आपदारी भगत जनता और फौज बीच मदद बधावन रे बारा माए जानकारी दी जा रही है। वो कार्यक्रम 30 जून ताई चलेला। डीग जिला रा कामा हलका माए आज एक तेज जा रही कार करीब 10 जना ने टक्कर मार दीनी। कार री फेंट माए आया लोग तीर्थराज विमल कुंड री परिक्रमा कर और पैदल जा रहा हा। जख्मी लोगा ने कामा रा सरकारी अस्पताल माए भर्ती कराई चिया जठौ घना जख्मी 5 जना ने भरतपुर रा आरबीएम सफाखाना माए रेफर कर दिया चिया। कार चलावन वालों मौकाउं फरार फेंक्यो। अरब मौसम प्रदेश का कई हलका माए चौमासाओं पहली री बिरखा वेवणु गर्मियों साता मिली है। जल संसाधन विभाग को मिली जानकारी रे मुजब ई महीना माए हाल ताई राज्य रा 3 जिला माए बत्तो, 3 माए सामान्य और 9 जिला माए सामान्य कम में बरसियो। मौसम विभाग आज ही 20 जिला माए गरज चमक सागे बरसात फेवन सारू चेतायो है। महकमा रे मुजब उदयपुर रे अलावा बाकी संभागा माए काली कठे कठे आंधी बारिश रा आसार है। 28 जिला माए येलो और श्री गंगानगर चूरू और बीकानेर जिला माए बरसात रो ऑरेंज अलर्ट जारी करी चियो है। ई बीचे आज हनुमानगढ़ माए दोपहर पाछे मौसम पलट गयो। माणी खबर नवीस बतायो के वठे मोकलो धूलो उड्यो।
2: हनुमानगढ़ जिले में लगभग 2 हफ्ते से लगातार दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आता है तथा धूल भरी आंधी व कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। इससे आम जन को हीट वेव से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि बिरानी इलाके में लगातार 2 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोट मूंग, ग्वार, मूंगफली, बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: आज बूंदी जिला रो 785 वो स्थापना दिवस मनाई चियो। ई मौके जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग री ओर भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। ऐतिहासिक गढ़ पैलेस माए शहनाई बजावन और गणेश पूजन रा कार्यक्रम राखी चिया। स्थापना दिवस रा सिलसिला माए देसी परदेसी सैलानिया ने खास स्मारक माए मुफ्त दाखिल होती चियो। हॉकी इंडिया 5-14 जुलाई ताई ब्रिटेन रा दौरा सारू 24 सदस्यों वाली जूनियर महिला टीम रो ऐलान करती नो है। खेदेम शिलेमा चानू टीम री कप्तान बनाई ची है। भारत री टीम नुआ कोच टिम वाइट री अगुवाई माए जूनियर एशिया कप समेत आवती अंतर्राष्ट्रीय होड़ान री तैयारी रा सिलसिला माए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड माए 7 मैच खेलेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-11780 माथे 26 जून ताई

0: राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ले रहा सा 1-800-117-800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र में बेगाई खिलौना बैंक शुरू करिया चावेला। और देश में नाना और दूर दराज रा शहरां री जनता ताई पासपोर्ट रो सुबितो पुगावन सारू पासपोर्ट सेवा केंद्रां रा नेटवर्क में लगातार बढ़ोतरी। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो क्यों मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगत रोग कार्यक्रम सुन रहा सगले ग्रामीण भाई ने और किसान भाई ने सत्यनारायण शर्मा और
1: रामस्वरूप बिश्नोई रा मोकला मोकला राम राम
0: राम राम रामस्वरूप भाई घना घना। और देखो सा हल्की सी फुहारा जी की है, 12 साल भी है।
1: देखो इन जेठ थे तब ते तावड़े में और किसान चौमासी रिचाव में उड़ी का है कि ना इंद्र भगवान उठे मेर करे और अपने कोई अड़ोतियो करने रुटे।
0: बिल्कुल सही बात कही, जहाँ अपन लड़ाई में युद्ध में जावा जो अपना हथियार जी का तैयार करा, घोड़ा बारूद असलो जी को तैयार करा, यही अपने खेत में जब जावा खेती सारू तो अपना जी का खेत में काम वाला उपकरण है, कृषि यंत्र है, कृषि उपकरण है, बेने तैयार करा
1: बन थे लारले जेठ महीने में काम लेना भी शुरू कर दिया।
0: बिल्कुल कर दिया,
1: जहाँ खेत में मान लो थाने करनो हो, हुड़ करनो हो, जने अपन भोड़ोई चाहिए जाए हो और फावड़ोई चाहिए जाए हो और कुल्हाड़ी चाहिए जाए।
0: और विशेष रूप जी की अपन अठे खेती करा हाँ, पारंपरिक खेती बीर में जी का छोटा खेती राज्य का उपकरण है, कृषि राज्य का उपकरण है, बिहारी आप महत्व है। जब बात करा अपन हलरी तो आज पहला आपा कही है कि जिसको हल काम में लेता वो अपन है, अपना जी का ऊँट है या बेल है भी हूँ अपा खेती कराया करता और वह लकड़ी रहा परंपरागत बनाया करता
1: बनाया करता है।
0: और बीर बाद जी आप हर जी को जोतता भी ना जुओ जी जुओ किया करता जी को भी
1: बल्द रहे या ऊँट है खांदे माथा
0: खांदे माथा जी को आऊँ तो बीरी भी अपना सार संभाल कर काम में लेऊं ता दिने।
1: एक बात कहूं सत्यनारायण भाई की, वो जुओ है नहीं, वो बड़ी जिम्मेदारी वालों काम है, ये जुए दूध नाम ही जिम्मेदारी है, कंधे माथे राख दियो।
0: हाँ।
1: और वो सार संभाल नहीं हुई न कदी आप बिन हम्बाड़ियो नहीं तो का उदय लाग जी का लोरी कोई आई बनोड़ी चीज है तो बिने काट लाग जी, तो आप बिने सार संभाल करता रहे ताकि बेड़ा आवे जन आप मैंने काम में ले सके।
0: बीर बात जी को छोटो उपकरण आवे काम में परंपरागत जहाँ खुरपी हुई तो वो भी बहुत ही काम कहीं है कि निराई गुड़ाई विशेष रूप से खरपतवार घास फूस बिना जरूरत हटाने सारू वो काम आया करे, पौधारी जी की देखभाल कराया करे। और विशेष रूप जी की अपन मात्र शक्ति है महिला है, बे खुरपी रो
1: बन तो काम आऊं तो रवे हूं को नहीं, खाली चौमासे में काम आए बे तो काले उनाले में कोई पौधे रे नीचे खोदी कर खाद बीज निराई गुड़ाई करनी हुए
0: और रोजीने काम आउन वाला फावड़ो जी को है वो खेती में नहीं दूसरे काम में बेपा काम में लेवा, चाहे नाली खोदनी हो चाहे माटी नहीं मैंने करनी हो खाद भरनी हो तो खेत रा घणकरा जका काम है बे फावड़ो कुदाली हूं यूं आपा करया करा।
1: और सत्यनारायण भाई एक बात याद आई थे फावड़ो की नहीं, जना कई लोग फावड़े न कसी केवे,
0: देखो बात तो अलग है
1: नहीं मन था होते यहाँ के हो पर आप जन कही थे फावड़ो की न के हो तो कई क्षेत्र विशेष में जहाँ आप उन्हें गंगानगर हनुमानगढ़ चले जाओ फावड़ो को कह कसी कही बन चाहे पानी आप खेत में देनो है नालो खोदनो है चाहे की करना है, देखो नाम की के हो पर वो काम कितो आवे चाहे सिंचाई खाला।

0: वेन चाहे इंद्र भगवान मेर करे जन में आली हुए
1: सही बात
0: आवड़े तो काम रो आदि
1: उदाली ये भी बात दरांती जा बात करा आपा तो फसल कटाई सर उचाई जाए और गेहूं है जो है चारो है ये गणकरी जी की फसल है बिहार में जरूरत पड़े और अब गेंती जी की है या फावड़ो पोली जमीन ने काम आ जाए गेंती जद कही है
0: काठी जमीन
1: काठी जमीन आ जाए बट है गेंती रो उपयोग अपने करनो पड़े
0: और कई ये उपकरण है नमन भाई माफ करिए सत्यमन भाई कि नए काम आवे नहीं तो आप कठी रेड भूल जान पच मौको पड़े न हो दा के कि पुसाल में है कट बाखड़ में है इनका गोर में है अगले ढूंढा तो अनुसार संभाल रखो एक जगह रखो कई बार टाबर आप पगा माथा पकड़ न पटक लेवे तो बाऊ अड़गा रखो आई हाँ, के चाहे
1: परंपरागत खेती सागे कि आप आजकल आधुनिक खेती करा में कई तरह उपकरण और जुड़े चाहे वह हैंड स्प्रेयर हो बीज बोन वाला सीड ड्रिल है यंत्र हो है निराई गड़ो सरू भी कई तरह यंत्र आ गया जिसका खरपतवार ने हटाया करे तो पारंपरिक और छोटा जी का कृषि उपकरण में कई लाभ है सस्ता होया करे रख रखाव में सोरा वे
0: कोई हाँ,
1: और याने कोई तरह रो कहीं डीजल बिजली
0: ऊपरी खर्चों की कौन चीज है सही बात सार संभाली रखनी
1: हाँ और छोटा जी का अपन सीमांत किसान है बिहार सरू उपकरण जिसका कम लागत में खेती उपयोग में आया करे और ई उपकरण सरू जिसका चौकी बात आया कि पर्यावरण मित्र भी है कई तरह रो प्रदूषण
0: कोई नुकसान
1: नुकसान जो है पहुंचा वे कौन
0: रंग बनोड़ा है सस्ता है हाँ, टिकाऊ है हाँ, कोई मैकेनिक ने ले जा कोई खर्चो को करना दूजी अब बनी जुड़ार कई आधुनिक भाई तर्क दई कि मैं तो मॉडर्न किसान हाँ मारे कन तो आंगी जरूरत कट है थे ऑलरेडी बात करी माने हल्को चाहिए जेनी ट्रैक्टर
1: वही दो आवे खेती कर रहे हैं अपन और
0: पारंपरिक खेती में बढ़ावा तो देने की बात कर रहे हैं
1: और अपने सरकार भी कही है कि कृषि यंत्र जिका है
0: उपकरण भी देवे
1: कई तरह की योजना जिकी है चलाया करे आधुनिक भगत रहने छोटा उपकरण खरीदवा खातर कई तरह की योजना कई तरह अनुदान जिको है
0: बिल्कुल
1: दिया करे तो किसान सही जाए भी कि पारंपरिक ज्ञान रह सके आधुनिक तकनीक रो प्रयोग कर जिका उपकरण है बचावे और चौकी खेती कर आप लाभ लेवे
0: ये देखो घरे बनोड़ी चीजें जो हड़ा आप घरे बनवा लियो मिस्त्री बिठा मैंने कोई सार संभाल कर ली स्थानीय स्तर पर जका का अपना मैकेनिक है या जका दूजा लुहार है सुथार है आने बढ़ावो मिले नहीं तो आरो धंधो चौपट उज अपन ने अपनी परंपरा ने निभावनी है अब एक परंपरा थे भूलो बोलो
1: देखो कार्यक्रम आगे
0: बढ़ा
1: जरूरत है तो सीमा मिश्रा गाइडो गीतरलो मीठो सो सुना।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु और शिक्षा, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सके। क्या आप जानते हैं, 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी।

0: देखो सत्यनारायण भाई थारी इच्छा है गीत सुननारी, पर मन यहाँ लगे थोड़ी आता ही कर ला,
1: आता ही जरूरी
0: है, जरूरी है ना, दोनों बात आगे हुई नहीं जने काम बनी रहा, तो बिरखा हुए यार, बिरखा रहा पानी जे थे संजो और नहीं राखियो ने,
1: देखो बार मैं आयो हूँ बारू कपड़ा मारा गीला है और बार अड़कल की बूंदा बांदी जी की हो रही है, दिनों का गर्मी ही और बार बिरखा हो रही है, एक एक बूंद जी की है नी बिना अपने सहेज रहा
0: मन लागे थे इशारो करो कैच द रे न बिहान रे। अब देखो हम जनाला हमज गया कि बिरखा रो पानी वोर छे, पानी किसो ही हो बिन संजो राखनो, पहली बडेरा अपना घीरी तरह बरत्या करता है और आपने घरे भी जे दो दिन नल नहीं आवे नहीं तो आपा निठा पड़ जे आवे जने इतो ढोला
1: बार लाल दिन में नहर बंदी हुई अपने ध्यान पड़ी हुई और पानी री जिकी कीमत काई है, है। और अबार जिकी आ थे बात करी केस द रेन अभियान, अपने भारत सरकार री एक महत्वपूर्ण जल संरक्षण अभियान योजना है और ये मोटा मोटी जो उद्देश्य री बात करा संदेश जी को है वो ये है कि जठे भी बिरख है जठे भी बरस है और जिया भी बरसा है बठो जो पानी एक एक बूंद है नी बिने संजो बठी राखनी है।
0: अब इया नहीं हुआ कि भी बिरखाड़े पानी खातर आप काले उन्नाले में तरसा के अब तो खेत में कुंड बरूडो कोनी और नाडी में पानी कोनी तालाब में पानी नहीं उड़ गयो, तो अपन जरूरत है कि भाई जका अपना परंपरागत जल स्रोत है
1: हाँ।
0: बने साफ सफाई रखा, अब चाहे अभियान किसो ही हो पण बिरी लांठी बात आ है कि एक तो परनाल पानी ही दो धरती मत ने जाहिर कुंड में भेड़ो हो जाए, तो एक तो वो पानी पीवण ने मीठो,
1: दूसरो जिको भूजल स्तर है
0: वो बढ़ जाए
1: भी बढ़ोतरी हुए।
0: और अब देखो एक बात कह दूं हाँ। कि जगह ट्यूबवेल वाला भाई यानी बे हर साल पाइप बड़ा वे बड़ा वे बिर लारे कोई कारण आपनी कठिन कठी थोड़ो मूर्खता तो है ही।
1: देखो सही बात कही राम स्वरूप भाई कि भाई आजकल पानी रेजी की कमी है देश रे कई भागा में गंभीर समस्या बन रही है और विशेष रूप जो अपना राजस्थान प्रदेश है जठे बिरखा कठी कहीं है कम हो तो बिरखा रो जो पानी है वो बिना उपयोग कर यदि बह जावे तो जिके सुकाई है कि भूजल स्तरी भरपाई जी की बावे कोनी और पानी रो उपयोग भी कोनी हुए, तो इन्हें सहेजनो और संचय करनो जरूरी है। और जब से बात करी कि जिका परंपरागत अपना स्रोत है जल रहा चाहे वह नाडी हो चाहे बावड़ी हो चाहे तालाब हो भी ना संरक्षण कर अपने जिकी केस दे रहे अभियान रमोने पानी में
0: देखो सत्यनारायण भाई आप तो बा बडेरा रा वंशज हाँ जका बडेरा पानी खातर कितना फोड़ा देखता दूर दराज डाणी गाड़ी जका लोग आबे घड़ा भरिया लावता गाडाऊ जो के टंकी न खाऊता पानी ने इया कहता कि भाई घी ढूले तो की नहीं बड़े पर पानी ढूले तो जी बड़े, पर आज भी फोड़ा बीता ही है क्योंकि राजस्थान में पानी री बिरखा री कमी तो है ही, इन कमी ने हम जन खातर आपने एकदम मौके मत है इन काम ने कैच द रेन अभियान रो जो उद्देश्य है सरकार लोक कल्याणकारी कदम है तो बिना बढ़ावा देने खातर अपन कोई सहभागी।

0: बिल्कुल सही बात कही कि जल जी को जीवन आधार है और आप पानी बचाने सर अपने प्रयास तो करना ही है और ई में अपा जिका नागरिक हाँ हर नागरिक रो कहीं
1: फर्ज बने
0: फर्ज बने और सक्रिय भागीदारी जी की है केस दरे ने बयान में लेनी है।
1: और मिनखपण भी वही कहवे कि स्याणा मिनखारी बतौड़ी बात ने चाहे बाजे मत होनी हो चाहे छापे में पढ़ी हो चाहे किताब में बडेरा कोई है बिने पल्ले राखनी है और काम में लेनी है। अब काम में लेने वाली चीज आ है कि थे वो गीत जो को बजावे नी बिन पाछो बजाओ
0: तो सुनो सा एक मीठो सो लोक गीत सगला मिल पर सुना सा।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
4: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना।
3: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास, आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
4: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
3: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
4: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
3: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
4: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: विकास कार्यक्रम डेवलपमेंट,
1: ये कार्यक्रम जब बात करी कि सड़क है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, साफ सफाई, स्वच्छता है, कृषि है, पशुपालन है, इन में रोजगार जैसा विषय पर विशेष ध्यान देना है और ग्राम सभा में गांव रे लोग आपकी समस्या और सुझाव का बतावे, बिन सुझाव अनुसार कही है कि गांव विकास री योजना तैयार करनी है।
0: अब देखो सत्यनारायण भाई, आ बात ने खाली मोटा मोटा नारा में भी इतमा थे लिख दा, स्वच्छता री बात लिख दो, स्लोगन लिख दो, की लिख दो,
1: पर भागीदारी जरूरी
0: है। कोनी के भी घर रो कचरो काटो और पड़ो साड़ा घर आगू ले जा नाग जो गांव रो कोई गोरू है बट डिगली कर दी, गांव में जका व्यवस्था करूड़ी है बिन अनुसार ही आप काम करो, जद्दी तो आपनो गांव रो विकास होला और गुआड़ चौकी लागेला।
1: अब गुआड़ चौकी एक कारण
0: और मंठा है थे के कहना चाहो थे, देखो भाई बिरखा उड़ी है पेड़ लगाओ
1: सोखा कहीं क्या करे, हरा भरा पेड़ लगे नी
0: गांव री ओळखाणी पेड़ पौधा
1: और थे तो ये विषयरा
0: कहीं
1: गांव में पेड़ लगाया हो
0: लगाया। और देखो एक लांठो कार्यक्रम है एक पेड़ माँ के नाम, देखो आदमी हगड़ाऊ बत्तो और मजबूत और ममतारो

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं रामचंद्र गोयल के स्वर में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे अनूप राज के स्वर में ये प्रस्तुति। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम अंत में आइए सुनते हैं शशि कला केकनी को।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं अलका याज्ञिक और उदित नारायण की आवाज में। ये गीत फिल्म का नाम है मोहरा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन और गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था शहनाई। बुढ़ा मिल गया, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। स्वर किशोर कुमार का है।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं,

0: कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया। रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
1: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
0: मेरे बारे में?
1: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो। तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
0: हटो चापलूस कहीं के।
1: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
0: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं बाबू खां बागड़वा का गाया ये लोकगीत।

कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।

0: विकास के, जन कल्याण के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं हनुमान दास और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy.

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं

0: Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
4: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।

0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: I also refer to the unwarranted...
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: It has always been, is and will remain so.
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई। असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आखिर में आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है बात एक रात की।

सुमन कल्याणपुर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
3: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
2: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
3: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही इन्वायरमेंट

0: के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा,
1: जी जी
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी
1: जी
0: जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस
1: जी
0: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में, 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए, और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त, कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है, कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है, या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है।

0: उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें

0: में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत ज़रूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूं
0: जी,
2: और मैं पैरा एथलीट हूं, शॉटपुट जैवलिन करती हूं। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है
0: जी,
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हमको बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक
0: जी।
2: फिर एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था। मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हुए साथ में कंपटीशन

0: ऐसे मैं शापू जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
0: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ, अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खास तौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी तो बताएं अपने बारे में। आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
1: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ। एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
1: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे
1: हाँ
2: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू
1: सॉल्यूशंस
2: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट। बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सॉल्यूशंस, एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो, एज I am a 10th grader this year.
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: It was something that I never dreamt of, and even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर। And I don't know how to explain it, to be honest.
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा, और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर हैं और एक केयर गिवर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया।

0: और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया, बताएं अपने बारे में कुछ।
1: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना, कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर फ्रॉम हिम कि हाँ ही कैन डू, ही कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, फिर मैंने फिर काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, मतलब उस बच्चे को मैंने काफी नाइक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन बन जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
0: बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
1: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके वो मैं हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था, मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में, मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
0: बिल्कुल,
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ, मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है तभी शुरू हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत,

0: लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
1: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
0: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर। जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
0: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इस इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
4: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। इस समय रात्रि के 10 बजने को हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

0: पकड़ ली, अब चाहे लग जाए हथकड़िया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझ पे नियत कर ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली,
0: ओ यारी छूटे ना
1: छूटे।

0: है घर छूटे आ सखिया यारा, मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे घर छूटे आ सखिया यारा, मैंने तो हाँ कर ली।
1: भाई अब चाहे रब रो।

0: भर ली,
1: मैंने हाथ कर हानी भर ली।
0: ओ यार रे छूटे ना,
1: छूटे ना हाथ कर ली तो कर ली। अब चाहे मारूं के या बाबा,
0: चाहे सर फूटे या माथा,
1: अब चाहे काटे मिले गलियां,
0: अब चाहे लग जाए हथकड़ियां,
1: अब चाहे घर छूटे या तकिया,
0: अब चाहे रब रूठे या दुनिया, अब चाहे मारूं या बाबा,
1: यादा मैंने खोहा कर ली। अब चाहे सर फूटे

ये स्वर था लता मंगेशकर का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं छाया गांगुली की आवाज में अगला गीत। फिल्म का नाम है गमन।

अभी आपने एक गीत सुना, आवाज थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में अगला गीत। फिल्म का नाम है जाल।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए फिल्म सच्चा झूठा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले का राग जैत में गाया ख्याल।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मारू चैनल है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और

0: दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।